मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैसाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं से आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल

0: दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम अभी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में देशगान।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आराधना। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा और कौशलेंद्र शर्मा के स्वर में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम आराधना की अगली प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के स्वर में ये भक्ति गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए तृप्ति साक्या के मधुर स्वर में ये भक्तिमय रचना।

0: संकलन एवं वाचन स्वर है धरती के।
1: मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे अनमोल चीज है तो वह है मानसिक शांति। धन, प्रसिद्धि, सफलता और सुविधाएं जीवन को आराम दे सकती हैं, परंतु मन की शांति ही जीवन को सच्चा सुख देती है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, प्रतिस्पर्धा या तनाव से घिरा हुआ है। ऐसे समय में मानसिक शांति का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मानसिक शांति का अर्थ केवल चुप रहना या अकेले बैठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर संतोष, धैर्य और सकारात्मकता को महसूस करना है। जब मनुष्य अपनी मन की उलझनों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीख लेता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति ही उसे जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देती है। भारतीय साहित्य के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन मानसिक शांति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे मानते थे कि मनुष्य को प्रकृति के करीब रहना चाहिए क्योंकि प्रकृति मन को सुकून देती है। वे घंटों पेड़ों की छांव में बैठकर लेखन किया करते थे। उनकी कविताओं और गीतों में भी मानसिक शांति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उनका प्रसिद्ध विचार था कि मनुष्य को बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया को समझना चाहिए। यही सोच उन्हें कठिन समय में भी शांत और रचनात्मक बनाए रखती थी। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। परीक्षा का दबाव, नौकरी की चिंता, रिश्तों में दूरियां और भविष्य का डर मनुष्य के मन को अशांत बना देते हैं। सोशल मीडिया ने भी लोगों के भीतर तुलना और असंतोष की भावना बढ़ा दी है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, लेकिन इस दौड़ में वह अपने मन की शांति खोता जा रहा है। मानसिक शांति के बिना जीवन की सारी उपलब्धियां अधूरी लगती हैं। मानसिक शांति पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को स्वयं से प्रेम करना सीखना चाहिए। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं तब मन हल्का महसूस करता है। इसके अलावा योग, ध्यान, संगीत और प्रकृति के साथ समय बिताना भी मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। परिवार और मित्रों के साथ खुलकर बातचीत करने में भी मन का बोझ कम होता है। जो हमारे पास है उसी में खुशी ढूंढना ही मानसिक शांति है। वास्तव में मानसिक शांति कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे मनुष्य अपने विचारों और व्यवहार से प्राप्त करता है। यदि मन शांत हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन हमें यही सिखाता है कि दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, परंतु अपने भीतर की शांति बनाए रखना यही सच्ची कला है। मानसिक शांति पाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ दे। आवश्यकता केवल इतनी है कि वह स्वयं को समझना सीखे। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी खुशी भूल जाते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है तब उसका मन हल्का होने लगता है। क्षमा करना, कम अपेक्षा रखना और वर्तमान में जीना मानसिक शांति की ओर बढ़ने वाले छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। संगीत भी मन को शांति देता है। जब मन बेचैन हो तब एक मधुर गीत, एक अच्छी पुस्तक या कुछ पल की खामोशी भी मन को नया सहारा दे सकती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मानसिक शांति जीवन का वह दीपक है जो अंधकार भरे समय में भी मनुष्य को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जिस व्यक्ति ने मन की शांति पा ली उसने मानो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया।
0: मानसिक शांति विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। संकलन एवं वाचन स्वर थे धरती के। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन भाग 58। मुख्य गायन स्वर है रविंद्र साठे के। संगीत संयोजक हैं

इस भक्ति गीत के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आलेख है मानसिक शांति।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन, मीडियम वेव और FM पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात।

0: जानकारी का विषय है खेत में नमी संरक्षक तकनीक।
1: किसान भाइयों और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि फसल सूख रही है तो ज़्यादा पानी दे दो, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या पानी की कमी की नहीं बल्कि नमी के संरक्षण की कमी है। मिट्टी में नमी रुक नहीं पा रही, यही असली चुनौती है। कारण क्या है? तेज धूप से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जमीन खुली रहती है जिससे नमी जल्दी उड़ जाती है। जैविक पदार्थ की कमी से मिट्टी पानी पकड़ नहीं पाती। इसके समाधान के लिए सबसे पहला उपाय है मल्चिंग, यानी मिट्टी को ढकना। मल्चिंग का मतलब है मिट्टी को पूरी तरह से ढक देना। सूखी घास, पत्ते, भूसा या फसल अवशेष के माध्यम से ऐसे किया जा सकता है। इससे होता यह है कि सूरज की सीधी किरण मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, पानी का वाष्पीकरण 40-60% तक कम हो जाता है, खरपतवार भी कम उगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने टमाटर या मिर्च की खेती की है, अगर आप पौधों के चारों ओर भूसा डालते हैं तो आपको कम पानी देना पड़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरा समाधान है कम पानी सही समय। सुबह जल्दी या शाम को सिंचाई करें। दोपहर में सिंचाई करने से पानी का बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसे तरीके अपनाएं तो और बेहतर होगा। याद रखिए, ज़्यादा पानी देना समाधान नहीं, सही समय पर देना ही समाधान है। तीसरा समाधान है मिट्टी को जिंदा बनाइए। मिट्टी अगर जीवित है तो वह नमी को पकड़ कर रखेगी। इसके लिए गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इनका उपयोग करें। यह सिर्फ खाद नहीं, यह मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। चौथा समाधान है मेड़बंदी और खेत का प्रबंधन। खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाएं, पानी को बहने से रोकें, ढलान के अनुसार जुताई करें। इससे बारिश का पानी भी खेत में रुकेगा और ज़मीन रिचार्ज होगी। कुल मिलाकर किसान भाइयों, अगर आप नमी बचाना सीख गए तो सूखा भी आपकी खेती को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भविष्य की खेती पानी नहीं, नमी प्रबंधन पर निर्भर है। नमी संरक्षण के लिए कुछ और बातों पर गौर करना जरूरी है। पहली बात, हमारी मिट्टी की ऊपरी 5-10 सेंटीमीटर परत से ही सबसे ज़्यादा नमी उड़ती है, इसलिए हम इस परत को ढक दें या ढीला रखें तो नमी का नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी बात, जिन खेतों में जैविक कार्बन यानी ऑर्गेनिक मैटर 1% बढ़ता है, वहाँ पानी रोकने की क्षमता हजारों लीटर प्रति हेक्टेयर तक बढ़ जाती है। इसका मतलब खाद डालना सिर्फ पोषण नहीं बल्कि पानी बचाना भी है। तीसरी बात, गहरी जुताई गर्मी में करने से मिट्टी के नीचे की परत खुलती है जिससे बारिश का पानी अंदर तक जाता है और लंबे समय तक नमी बनी रहती है। चौथी बात, अगर आप फसल के बीच बीच में हल्की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत टूट जाती है और कैपिलरी एक्शन कम हो जाता है, यानी नीचे का पानी ऊपर आकर उड़ नहीं पाता। और सबसे ज़रूरी बात, खेत को कभी भी खाली ना छोड़ें। अगर मुख्य फसल नहीं है तो ढैंचा, सनई या कोई कवर क्रॉप ज़रूर लगाएं। इससे ज़मीन ढकी रहती है और नमी सुरक्षित रहती है। इसलिए किसान भाइयों और बहनों, पानी बचाना भी ज़रूरी है और नमी का संरक्षण भी ज़रूरी है। समझने वाली बात यह भी है कि रेतीली यानी बलुई मिट्टी में पानी जल्दी नीचे चला जाता है और नमी टिकती नहीं है, जबकि चिकनी यानी काली और मटियार मिट्टी में पानी को ज़्यादा समय तक रोक कर रखने की क्षमता होती है। इसलिए अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो आपको ज़्यादा बार लेकिन कम मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा हवा भी नमी का बहुत बड़ा दुश्मन है। तेज़ हवा चलने से मिट्टी की नमी तेज़ी से उड़ती है। इसके समाधान के लिए खेत के चारों ओर पेड़ या झाड़ियाँ लगाकर एक अवरोध बनाएं। इसके अलावा इससे नमी का नुकसान 20-30% तक कम हो सकता है। बहुत घनी बुआई करने से पौधे आपस में पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और बहुत ज़्यादा दूरी रखने से ज़मीन खुली रहती है जिससे नमी उड़ जाती है। इसलिए संतुलित दूरी बहुत ज़रूरी है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:50

10 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण समय होगा और रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का अनुप्रसारण किया जाएगा। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 बजे कार्यक्रम बातों बातों में का अनुप्रसारण समय होगा। ये दोनों कार्यक्रम हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से कुछ ही देर में सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम सुगम संगीत हम पेश करेंगे सुबह 7:15 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा प्रस्तुत करेंगे हम सुबह 7:30 पर। बातों और गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम गुंजन हम लेकर आएंगे सुबह 9:15 पर। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा सुबह 11:05 पर। दिन के 12 बजे मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग का प्रसारण समय होगा। नुसरत फतेह अली खां की आवाज में कार्यक्रम कव्वालियां हम पेश करेंगे दिन के 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण समय होगा दिन के 1:05 पर और कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण सुनेंगे आप शाम 6:05 पर। बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:30 पर। कार्यक्रम गीत गंधा हम पेश करेंगे दिन के 2:30 पर। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दिन के 1:40 पर। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का आनंद आप लेंगे रात 8 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे। कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप लेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का समय होगा शाम 6:20 पर। कार्यक्रम माधुरी का आनंद आप लेंगे शाम 6:30 पर और चित्रपट संगीत का समय होगा शाम 7:05 पर। शेष भाग आप सुनेंगे रात 9:15 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर और होगी किसानवाड़ी शाम 7:30 पर। ये थे हमारे केंद्र के कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब संस्कृत समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निर्मल दास और साथी के स्वर में इस सरगुजिहा भिनसरिहा गीत से।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अमृत मिंज और साथी के स्वर में ये सादरी खेमटा कर्मा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गूंजे जंगल की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं हीरा चंद पटेल और साथी के स्वर में ये भोजपुरी खेमटा गीत।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अदनान सामी की आवाज़ में अदनान सामी का लिखा ये नगमा।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम सुगम संगीत का अगला नगमा हम पेश कर रहे हैं अदनान शामी और आशा भोसले की आवाजों में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत की अंतिम प्रस्तुति में पेश है अदनान सामी की आवाज में रियाज़ुर रहमान सहगल का लिखा ये नगमा।

सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूँ प्रियंका। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गाँव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचार MCB से। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विकासखंड खड़गवा के ग्राम मझौली में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आम जन की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया गया तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुंठपुर, जिला कोरिया, सिविल न्यायालय मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जनकपुर तथा जिला MCB के सभी राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर जिले भर में व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है हावड़ा ब्रिज। संगीत निर्देशन है OP नैयर का।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

समाचार एमसीबी से। जिले के स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में 7 मई को भावुक और गरिमामय माहौल के बीच जिला कलेक्टर को उनके स्थानांतरण पर भव्य विदाई दी गई। समारोह में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों की बड़ी उपस्थिति रही। पूरे कार्यक्रम के दौरान भावनाओं का ऐसा माहौल बना रहा कि कर्मचारियों की आंखें नम दिखाई दी। समाचार अंबिकापुर से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा के मार्गदर्शन में 9 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा के अंतर्गत सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा, योग्य दांडिक प्रकरण व्यवहार प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, पारिवारिक विवाद, दुर्घटना संबंधी दावा, मजदूरों से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत चोरी संबंधित प्रकरण जैसे प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के माध्यम से किया जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि हाइब्रिड लोक अदालत के माध्यम से पुनः पक्षकार गण को यह अवसर प्रदान हो रहा है कि वे राजीनामा योग्य प्रकरणों में अपनी आपसी सहमति के आधार पर अपने मध्य के विवाद का अंत कर सकते हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाज़ों में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत निर्देशन है हंसलाल भगतराम का और फिल्म है बड़ी बहन।

समाचार अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं हेतु प्रयास प्रचयन परीक्षा 10 मई 2026 को समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक अंबिकापुर शहर के 5 केंद्रों में आयोजित होगी। एकलव्य आवासीय विद्यालय रीखी कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर में अनुक्रमांक 4311001 से 4311387 एकलव्य आवासीय विद्यालय लुंड्रा प्रतापपुर रोड घंघरी अंबिकापुर में अनुक्रमांक 4312001 से 4312218 तक कार्मेल स्कूल नमना कला रिंग रोड अंबिकापुर में अनुक्रमांक 4313001 से 4313600 तक न्यू DPS स्कूल प्रतापपुर रोड अंबिकापुर में 4314001 से 4314386 तक एवं प्रयास आवासीय विद्यालय प्रतापपुर रोड घंघरी में अनुक्रमांक 4315001 से 4315801 तक के परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थी एवं उनके पालकों को सूचित किया है कि परीक्षा का समय दिनांक एवं परीक्षा केंद्रों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग समय 8 बजे से 9:30 तक निर्धारित है। और आइए सुनते हैं काला पानी फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। संगीत निर्देशन है SD बर्मन का।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिले के लुंड्रा विकासखंड के लमगांव स्थित श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 45 नवविवाहित जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सात फेरे लेकर नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है तीसरी कसम, गायक कलाकार हैं मुकेश, शब्द रचना है शैलेंद्र की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार अंबिकापुर से। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 9 मई को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 2 जन समस्या निवारण शिविर आयोजित होंगी। विकासखंड बतौली में शिविर स्थल घोघरा में शिविर लगेगा, जिसमें 14 ग्राम पंचायतों घोघरा, मानपुर, शिवपुर, टेड़गा, सल्याडीह, बांसा, झाल, टीरंग, बोदा, बिलासपुर, घुटरापारा, तरागी, ललाती, पोपरेंगा, सलमा के ग्रामीण अपने मांगों एवं शिकायतों संबंधित आवेदन देंगे। शिविर प्रभारी अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर एवं सहायक प्रभारी अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बतौली होंगे। इसी प्रकार विकास खंड लुंड्रा में शिविर स्थल झेरा डीह में शिविर होगा, जिसमें 20 ग्राम पंचायतों झेरा डीह, बरगीडीह, गढ़बीरा, तुरियाबीरा, सिलसिला, लमगांव, अस्कला, कोट, गंगापुर, ऊंचडीह, गेरसा, जरहाडीह, डहौली, खाराकोना, उर्दरा, महोरा, जराकेला, ससौली, जामडीह, दोरना के ग्रामीण अपने मांगों एवं शिकायतों संबंधित आवेदन देंगे। शिविर प्रभारी अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी लुंड्रा एवं सहायक प्रभारी अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लुंड्रा होंगे। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 में शनि मंदिर तालाब के सौंदर्यीकरण एवं छठ घाट निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्र की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जन सुविधाओं की नई दिशा देने वाला साबित होगा। सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म कश्मीर की कली है से। संगीत निर्देशन है SH बिहारी का।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

0: बैन पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में। पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और

0: पुडुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने TVK को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले TVK ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार

0: त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट एस्कटॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार।

0: समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपये गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। सुवेंदु अधिकारी टू टेक ओथ एज फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल दिस मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह टू अटेंड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी। Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Raja Subramani appointed new Chief of Defence Staff.

0: सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि गर्भधारण की आदर्श आयु क्या होती है?
1: आइडियल एज जो होती है प्रेगनेंसी की, वो 20 साल से 35 साल का होता है। अगर 20 साल से कम आयु है तो महिला उस समय उतनी प्रिपेयर्ड नहीं रहती है। एंड 35 साल से बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कि 35 साल के बाद उसको गर्भ धारण करने में ही दिक्कत आती है। जैसे कि जो एक फीमेल में क्या रहता है कि हमारी AMH वैल्यू, हमारे जो अंडे होते हैं फीमेल्स के, वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, फिर उसके अगर 35 ईयर के बाद जो एज लिमिट होती है उसमें उसके अंडे की भी एजिंग होने लग जाती है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी
0: जी
1: दोनों में प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना खुद में ही एक चुनावदायी चीज़ होती है। एंड देन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है 35 साल के बाद, तो उसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे BP का बढ़ जाना, एनीमिया, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटिक जो हो जाती हैं फीमेल्स, और प्लस जो इनका नेचुरली जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो अदर एज लिमिट फैक्टर से अलग रहते हैं। तो जो आइडियल एज होती है वो 35 होती है, 35 के पहले होती है।
0: अच्छा।
1: तो इसमें क्या रहता है, अदर कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं बच्चों में। अगर माँ 35 के बाद प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली या कंजेनाइटली मालफॉर्म्ड डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप 35 के पहले ही प्लान कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप नहीं प्लान कर सकते, बट हाई रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन स्टिल वी कैन गो फॉर इट। जब माँ रेडी है वो तब प्रेग्नेंट हो सकती है।
0: जी। तो पहली बार जो महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं, उनकी देखभाल में किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं?
1: जो पहली बार माँ बनती हैं वो महिलाएं, अक्सर उनको समझ नहीं आता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। वो अपने मतलब उनके, एक तो वो हर चीज़ घर परिवार में अलग सलाह मिलती है उनको, वो उनके बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं,
0: जी
1: तो उनको शारीरिक जो बदलाव आते हैं जैसे थकान लगना, शाम के समय बुखार जैसा लगना, उल्टी घबराहट लगना, वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाती कि इसको कैसे डील करें। तो इनके लिए सबसे पहले तो हमको ये डर को हटाना है, ये असहजता को हटाना है कि ये सब चीज़ें जो उनके साथ हो रही हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये नॉर्मल चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हैं। प्रेगनेंसी जब हमको कंसीव होती है तो एक प्रोजेस्ट्रॉन करके एक हार्मोन होता है जो बहुत पीक लेवल, मतलब जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा उल्टी आना, चक्कर आना, थोड़ा सा घबराहट जैसा लगना।
0: जी
1: तो इसके लिए इनको डरने की बात नहीं है, इसमें बॉडी में, खाने में या फिर अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें चेंजेस करने होते हैं। जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं तो इनको फ्रिक्वेंट स्मॉल मील लेना, इनको कम से कम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ करके खाना है। अगर ये बहुत देर खाली पेट रहती है तो दिक्कत की बात है, और अगर ये पेट भर के खाती है तो इनको उल्टी और वॉमिटिंग हो गई। अगर खाली पेट रहेंगी तो एसिडिटी बनती है, तो हाइपर एसिडिटी की वजह से वो और नौजिया और वॉमिटिंग्स होते हैं। अगर पेट भर के खा लेते हैं तो फिर वो फिर पचता नहीं है, वो फिर उल्टियाँ हो जाती है। तो एक फ्रिक्वेंट एक मील डिसाइड रखना है कि मुझे हर 2-2 घंटे में, हर 3-3 घंटे में लाइट खाना खाना है, और जो भी खा रहे हैं वो फ्रेश बना होना चाहिए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पाइसी कम खाना है, और जो पसंद है वो सब खा सकते हैं। ऐसा नहीं है मुझे ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती। जो आपको, अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो ज़रूरी नहीं आपको प्रेगनेंसी में दूध पीना ही है, लेकिन आप कोशिश करिए आप उसको लें। लेकिन आपको दूध पीने से तुरंत उल्टी हो जा रही तो थोड़े 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए थोड़ा कंट्रोल कर मत लीजिए। दूसरी बात यह है कि शाम के समय जो थकान लग रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें नॉर्मली अडेप्ट हो जाएंगी। इनिशियली क्या रहता है कि शुरुआत के 2-3-4 महीनों में ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि, और महिलाओं का सबसे बड़ा डर रहता है कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। तो शुरुआत के समय में वजन नहीं बढ़ता क्योंकि ऑलरेडी वो खाने में परहेज कर रही हैं, ऑलरेडी उनको उल्टियां हो रही हैं, तो उस समय वजन बल्कि थोड़ा कम रहता है, या बढ़ा तो 1 से 2 किलो बढ़ेगा, लेकिन बच्चे की वजह से वो वजन उनको अभी नहीं बढ़ाना या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। उनको बस एक साधारण घर का खाना खाना है जिसमें वो थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले, या जो नॉर्मल घर का खाना है से वो भी सेवन कर सकती हैं। उसमें कोई फल और जो जो चीज़ उनको पसंद है, जो चीज़ उनको खाने में भा रही है, या फिर वो पस खा सकती है, उससे उसको दिक्कत नहीं हो रही, वो सब चीज़ें वो ले सकती हैं। बस इसमें ये

0: श्रोताओं नमस्कार। माँ बनना एक बहुत सुखद और अद्भुत अनुभव होता है, पर यह सुरक्षित भी हो इसके लिए ज़रूरी है गर्भधारण से लेकर प्रसव तक हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत, जो श्री सत्य साई माँ एवं बाल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।

0: रखना है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, अभी नीचे झुकना, वजन उठाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी रहती हैं।
1: कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी चाहिए गर्भावस्था के दौरान?
0: देखिए, यूजुअली जो पपाया होता है, पपाया में एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं, तो हम लोग डेंटली वो अपना प्रेगनेंसी आगे डील करती है। तो एएनसी विजिट यूजुअली तो 8 होना चाहिए, मतलब WHO के अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन मिनिमम 4 विजिट तो उसको करना चाहिए। जो पहला 3 महीना होता है जैसे वो प्रेगनेंसी कंसीव की और 12 हफ्ते तक का, तो ये जो समय रहता है इसमें हम फर्स्ट मदर को हम बुलाते हैं, उसमें हम उनकी सबसे पहले बेसिक ANC प्रोफाइल, मतलब जिसमें सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें उसका HB कितना है, उसके वायरल मार्कर्स कैसे हैं, उसके यूरिन कैसा, यूरिन टेस्ट हुआ जाता है इसमें प्रोटीन्स या यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, देन ये सारी सिकलिंग वगैरह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिकलिंग भी बहुत प्रोन है, तो ये सारी चीजें हम रूल आउट कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये रहता है कि एक बेसलाइन हम शुगर भी चेक करते हैं मदर का उसी में, क्योंकि जब अगर बेसलाइन शुगर नॉर्मल है उसका और अगर 20 हफ्ते बाद शुगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मदर डायबिटिक नहीं है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज के साइड जा रही है।
1: ओके,
0: मतलब वो गर्भ के बाद जो डायबिटीज होता है उसके साइड जा रही है। तो बेसलाइन हमारे पास एक सारे जांच होने चाहिए जो हम ANC प्रोफाइल जो फर्स्ट विजिट में हम कराते हैं। दूसरी चीजें हम लोग ये कराते हैं जो फर्स्ट 3 महीने का रहता है उसमें एक NT-NB स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्तों के बीच में होता है। वो NT-NB स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी स्कैन है, उसमें बच्चे की नाक की हड्डी देखा जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बच्चे के गले के पीछे का एक थिकनेस मेजर किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली एक डबल मार्कर का रिपोर्ट बनता है। डबल मार्कर में ये पता चलता है कि उस बच्चे को कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये इनिशियली पहला, मतलब ये स्क्रीनिंग होता है जो हम 3rd महीने में करते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट हुआ, उसपे हम मदर को फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं एंड मदर को एक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन प्लस मैंने देते हैं। अगर उसको बहुत उल्टियां हैं तो हम उसको खाने के बारे में सिखाते हैं, हम उसको सिखाते हैं कि बॉडी तुम्हारी नेचुरली कैसे अब तुमको आगे डील करना है। तो फर्स्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सेकेंड विजिट जो रहती है वो हमारा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू होता है, तो उसमें हम एक एनोमली स्कैन करते हैं जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है। वो एनोमली स्कैन में हम बेबी को हेड टू टो स्क्रीनिंग किया जाता है कि बच्चे में सब चीजें ठीक है, कभी लाइक उसके लेंसेस कैसे हैं, उसके आईज से लेके उसके हाथ, उसके टो, उसके फिंगर्स, एवरीथिंग उसमें स्क्रीनिंग होती है कि बच्चे में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और इसमें क्या रहता है, जिन्होंने 3 महीने की सोनोग्राफी नहीं करवाई है वो अब इसमें क्वाड्रपल मार्कर में करवा सकते हैं 18 से 20 हफ्तों के बीच में। तो क्वाड्रपल मार्कर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू रूल आउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लेकिन जिनका ऑलरेडी डबल मार्कर हो गया है वो जरूरी नहीं कि क्वाड्रपल मार्कर भी करवाएं। और अगर 5th मंथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो 20 वीक्स तक हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेबी को आगे कैसे हमको प्लांट आउट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ हमको लगता है कि क्वाड्रपल मार्कर में हाई रिस्क आया है तो हम उसके आगे का टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल NIPT या एमनियोसेंटेसिस। NIPT मदर का ब्लड लेकर टेस्ट होता है जिसमें मां का ब्लड निकालकर उसको जेनेटिकली और क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग किया जाता है। एंड एमनियो, अगर हमको 100% कन्फर्मेटरी चाहिए कि बच्चे में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी नहीं है, तो हम लोग फिर एमनियोसेंटेसिस करते हैं। उसमें मां के आसपास का जो पानी होता है उसको सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है, सोनोग्राफी गाइडेड रहता है ये। तो उसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को जेनेटिकली इश्यूज नहीं है या क्रोमोसोमली बच्चा फिट है, अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान करते हैं। तो सब एक एक स्टेप्स का, एक एक विजिट का उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर बेबी का ग्रोथ आता है कि बेबी ग्रो कैसे कर रहा है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको 600 ग्राम प्लस ऐसा रहना चाहिए, कितना उसकी लैग हो रही है। फिर 32 वीक्स अगर हो रहे हैं तो उसमें 2 kg के अराउंड आ रहा है, 1.7 to 2 kg। तो इनिशियली फिर हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं
1: जी,
0: एंड इसी बीच में हम टेटनस या वैक्सीनेशन का भी इंक्लूड करते हैं जो विजिट्स आते हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप बोलोगे तो बेसिकली 2 वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट TT का जो वैक्सीनेशन लगता है टेटनस का, वो 3 महीने में लग जाना चाहिए।
1: पहला टीका
0: 3 महीने में, ठीक है। और दूसरा टीका जो रहता है वो एक महीने

0: बाद लगता है जो फर्स्ट टीका लग गया है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पहला टीटी का टीका ले लीजिए और जैसे 28 वीक्स हो गया, सातवां महीना लग जाए, तो टी डैप करके एक वैक्सीनेशन होता है, वो मोर सब एफिशिएंट रहता है। उसमें टेटनस भी कवर होता है, डिप्थेरिया भी कवर होता है और पर्ट्यूसिस भी कवर होता है बेबी का, ठीक है। तो उसमें माँ और बेबी दोनों का टेटनस का, माँ का कवर हो गया, पर्ट्यूसिस डिप्थेरिया बच्चे का भी कवर हो जाता है। तो जिसके लेकिन अभी ये गवर्नमेंट में नहीं है, तो हम टेटनस का दो डोज इजिली लगा सकते हैं।
1: तो कम से कम दो टीके
0: बहुत जरूरी है जी, क्योंकि क्या अगर हम टेटनस का टीका नहीं लगाएंगे तो क्लॉस्ट्रेडियम टेटनी करके एक ऑर्गेनिज्म है, वो अगर उससे वो क्या रहेगा, कल को अगर डिलीवरी हो रही है कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ ये इन्फेक्शन फैल गया तो उसमें मदर के लिए वो जानलेवा भी आगे बन सकता है। तो टेटनस मस्ट है लगाना
1: जी। जी ये बताइए कि संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव कितना जरूरी है?
0: इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या रहता है, एक्चुअली मैं आपको एक अपने पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरी मम्मी जो सिंगल चाइल्ड थी एंड मेरी नानी मतलब मेरी मम्मी की जो मदर, शी डाइड बिकॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमोरेज। उन्होंने घर पे डिलीवरी हुआ एंड दैट लॉन्ग बैक एंड उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, मेरी वो वहीं कोलैप्स हो गई। तो घर पे डिलीवरी कराना बहुत बहुत खतरे वाली चीजें हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल में हर सुविधा है मां और बच्चे को बचाने के लिए। पहली बात तो मां को शुरुआत से ही इंस्टीट्यूशनल में आके अपनी सारी जांचें एचबी बीपी शुगर सारे चेक कराते रहना चाहिए, जिसमें वो स्मूथली 9 महीने तक अच्छे से स्वस्थली खींच सके, फिर वो स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सके। और इंस्टीट्यूशनल में डिलीवरी कराने से बहुत सारे फायदे हैं कि अगर बच्चा फंस रहा है या माँ को प्रसव होने के बाद बहुत ब्लीडिंग है तो हम उन सबको ट्रीट कर सकते हैं, हम माँ की जान को बचा सकते हैं तुरंत। तो मैम मेरे हिसाब से हर एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी कहा आपने। बातें और भी हैं, सवाल हमारे पास और भी हैं। फिलहाल आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप आज हमारे श्रोताओं को?
0: मैम मुझे डियर जिंदगी का लव यू जिंदगी गाना बहुत पसंद है, वो इतना एनर्जेटिक है एंड वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, तो मुझे वो सॉन्ग तो पसंद है।
1: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंवलजीत को। मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को अपने खान पान पे किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए जो उनके लिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हों।
1: देखिए, प्रेगनेंसी में मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम सुबह दोपहर रात को खाते हैं, जो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से रहता है कि, तो वो ऐसा नहीं खाना है। हमको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना या उस मील को 5 से 6 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए और विटामिन्स भी चाहिए और हेल्दी फैट्स भी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में जो जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स वाला जो घर के जो खाने वो भी भरपूर रहते हैं। उसमें आप दही ऐड कर लीजिए, उसमें आप एक ग्लास दूध ऐड कर लीजिए, जैसा भी आपको, अगर उल्टियां नहीं हो रही है या फिर आपको उससे दिक्कत नहीं हो रही आप वैसा खाना खाइए। लेकिन फिर जब सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब आप 14 वीक्स के बाद, 14 हफ्ते के बाद जब आप पहुंचती हैं तो ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए हैं, तो उसमें राइस, चावल, पोहा, ओट्स सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एंड देन प्रोटीन्स की बात आए तो प्रोटीन्स बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर कोई मांसाहारी नहीं खा सकता तो फिर वो पनीर खाए और सोयाबीन खाए एंड दाल, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें। में जो मूंग दाल का जो ओवरनाइट सोक, रात भर आप मूंग दाल को भिगो के रख दिए, फिर वो अंकुरित दाल को कच्चा नहीं खाना, उस अंकुरित दाल को या तो थोड़ा स्टीम कर लेना है या फिर उसका कोई चीला बनाकर खाना है। उस चीला भी जो आप बना रहे हैं उस अंकुरित मूंग के दाल से, उसमें आप कुछ और ऐड कर दीजिए, जैसे कुछ गाजर हो गया, कोई चुकंदर हो गया। चुकंदर तो बहुत अच्छा है खाने के लिए, वो ब्लड भी बढ़ा रहा है, तो उसमें गाजर, चुकंदर, कुछ पालक वगैरह पीस कर डाल दिया तो वो एक हेल्दी बन जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, देन कुछ एनर्जी के लिए हेल्दी फैट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आप घी थोड़ा मात्रा में लेना जरूरी है, घी और ऑयल हल्का मात्रा में लेना जरूरी है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए हमको ये जरूरत है, तो उसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी आपके पास फ्रेश अवेलेबल है, और सुबह के समय आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जिसमें आप अखरोट रख सकते हैं, बादाम रख सकते हैं, किशमिश रख सकती हैं। जो काले किशमिश होते हैं वो शायद कॉन्स्टिपेशन के लिए मतलब अच्छे रहते हैं, वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो हर थोड़े थोड़े देर में आप थोड़ा खाइए, जरूरी नहीं आप एक साथ 3 रोटियां एक साथ खा रही हैं, नहीं होगा। तो आप एक ही रोटी खाइए, फिर 2 घंटे बाद फिर थोड़ा कुछ खाइए, या फिर 2 घंटे बाद फिर से रोटी खाइए। तो वैसे आपको फ्रीक्वेंटली स्मॉल और हेल्दी डाइट लेना, क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी होना चाहिए फूड का। जैसे आप डेली बस चिला खा रही हैं तो उसमें आपके शरीर को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा। आप उस चिला में इंक्लूड कर दीजिए गाजर, चुकंदर या हरी सब्जियां या हरी भाजी, या दाल बना रही हैं तो दाल के अंदर इंक्लूड सोयाबीन कर दीजिए, दाल या सोयाबीन को मिलाइए, सोयाबीन के साथ कुछ और रख लीजिए। सोयाबीन को ग्रेट करके उसका आप भुर्जी जैसा खा

0: लीजिए, तो एक बाउल हमेशा अपने पास रेडी रखना है कुछ हेल्दी चीजों का। कुछ नहीं समझ में आए तो एक बनाना ले लीजिए, एक फ्रूट्स डेली इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप दही के फॉर्म में ले लीजिए, अगर आपको दही भी नहीं पसंद है तो आप पनीर के रूप में ले लीजिए।
1: एक सवाल ये भी आता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान व्यायाम और योग गर्भस्थ महिला के लिए आवश्यक है?
0: बिल्कुल आवश्यक है। योगा यूजुअली सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गर्भावस्था में वो ज्यादा रोल प्ले करता है। मदर ऑलरेडी एंजाइटी, फियर, मतलब एंजाइटी और सब घबराहट से उभरती रहती है, तो उसके लिए योगा करना, उसके लिए थोड़ा मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका प्रभाव गर्भ पर भी पड़ता है। इसीलिए आजकल शायद गर्भ संस्कार के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है कि जिसमें सातवें महीने में गर्भ में जो बच्चा रहता है उसमें सुनने की शक्ति आती है, तो माँ जो पढ़ रही है, माँ जो देख रही है, माँ जो फील कर रही है, माँ स्ट्रेस को जो रिलीफ कर रही है, तो उसमें बेबी के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और योगा तो ट्राइमेस्टर के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से ही योगा करिए कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए योगा करना, ऐसा नहीं होता। हर योगा का भी अलग पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट, जब पहला समय चल रहा है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको सांस लेने छोड़ना, उसमें अनुलोम विलोम ये सब चीजें करनी है ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, एंड उसमें आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। लेकिन जैसे जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर क्रॉस करते हैं, तब आपको कुछ फ्लोरिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं, तो शुरू से ही एकदम हैवी एक्सरसाइजेस वर्कलोड वगैरह नहीं करना।
1: स्तनपान शिशु के लिए कितना आवश्यक है?
0: स्तनपान शिशु के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो सबसे पहला तो एक माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। स्तनपान माँ के लिए भी नया रहता है, बच्चे के लिए भी वो चीजें उतनी ही नई रहती हैं, तो माँ बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा रोल आता है हेल्थ केयर वर्कर्स का, कि वो माँ को सिखाए, प्रॉपर टेक्निक सिखाए, प्रॉपर तरीका बताए, कितनी बार दूध पिलाना है वो समझाए। और जो पहला मिल्क होता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है बच्चों के लिए। तो अगर बच्चे को स्वस्थ रहना है, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो माँ का दूध ही उसे पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में जो एसेंशियल विटामिन्स, एसेंशियल मिनरल्स है, इम्यूनोग्लोबुलिंस है, वो आपको बाहर के गाय के दूध में या फिर किसी डब्बे के दूध में नहीं मिलेगा। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट से लेके हर चीजों के लिए माँ का दूध जरूरी है। दूसरी बात यह है, एक तो बॉन्डिंग रहती है, दूसरा बच्चे के लिए, तीसरा इससे ये एक बैरियर का भी, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है। जब तक माँ दूध बच्चे को पिला रही है, तब तक कम चांसेस रहता है उसकी प्रेगनेंसी दोबारा से होने का, तो एक उसके लिए भी जरूरत है। दूसरा, इसका बहुत सारे माँ के ऊपर, शरीर के ऊपर भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस वगैरह सब बहुत कम रहते हैं अगर माँ दूध पिला रही है बच्चे को।
1: जी, क्या स्तनपान न करवाने से माँ को कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है?
0: देखिए, बहुत सारी माँ को ऐसा लगता है कि दूध तो आ रहा है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं पिला सकती, नहीं पिला पाती हैं, तो उनको लगता है कि बच्चा पी नहीं रहा है, लेकिन दूध इकट्ठा हो रहा है, दूध जम रहा है, तो उससे क्या होता है कि माँ को एक समय के बाद वो ब्रेस्ट में लंप्स बन जाता है, तो उससे उसको पीड़ा, दर्द होना, बुखार आना, ये सारी चीजें दिक्कत आती हैं। तो माँ को पहले टेक्निक सही पता होना चाहिए कि कैसे बच्चे को सन से लगाना है और कितने बार दूध पिलाना, और दूध को वहां जमने नहीं देना है, उससे इन्फेक्शन का भी सोर्स होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो इनिशियल स्टेज में, लेकिन अगर लॉन्ग प्रोलॉन्ग देखा जाए तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी प्रिवेंट होता है। अगर आप बच्चे को प्रॉपरली पिला रहे हैं, प्रॉपरली उसको देख रहे हैं, तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर होना, ओवेरियन कैंसर होना, बहुत सारी चीजों में ये सब प्रिवेंशन का रोल फॉलो करते हैं।
1: आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य के बारे में। ये बताइए कि एनीमिया और कुपोषण हमारे राज्य की महिलाओं में एक प्रमुख और ज्वलंत समस्या है, इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं महिलाएं?
0: एनीमिया और कुपोषण आज भी हमारे जो भारत में है वो बहुत ज्यादा है, गर्भवती महिलाओं में देखा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसी महिला प्रेग्नेंट हो रही है, गर्भवती हो रही है, तो स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है कि कौन एनीमिक है। तो जो पहली बार जब हम माँ को मिल रहे हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो रही है, हम उसी समय ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि मदर को एनीमिया है या नहीं। एनीमिया मतलब कि ब्लड 10 ग्राम से कम होना, और सीवियर एनीमिया मतलब 7 ग्राम से कम होना। तो अगर वैसा रहता है तो माँ को शुरुआत से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, शुरुआत से ही उसको आयरन सप्लीमेंटेशन अगर वो नहीं डील कर

0: पाते अगर 7 ग्राम से ब्लड कम है तो डायरेक्टली हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और एनीमिया अगर कैरी ऑन करेगी तो वो माँ के लिए तो नुकसानदायी है, वो बच्चे के ऊपर भी असर करता है। तो एनीमिया को ट्रीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इसको स्क्रीनिंग किया जाए तो ये इजीली हम इसको ट्रीट प्रिवेंटेबल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एनीमिया जो मदर में है वो बहुत कॉमन देखा जाता है, उसके लिए डिवॉर्मिंग होती है, मतलब कि अंदर पेट में अगर कीड़े हैं तो हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स जो आंगनवाड़ी में भी मिलती है एल्बेंडाजोल के नाम से, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी देते हैं। इनफैक्ट लाइक हर गवर्नमेंट सेटअप में वो डिवॉर्मिंग हुआ जाता है माँ का, तो उससे भी जो आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है वो उसमें हेल्प होती है। प्लस आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो टैबलेट सप्लीमेंट्स हम देते हैं, अगर आयरन टैबलेट्स वो नहीं टॉलरेट कर पा रही है, उससे नहीं हो पा रहा है, वो उल्टियां हो जा रही है या आयरन से उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मदर आयरन नहीं ले रही है, तो फिर हम उसको इंजेक्टेबल आयरन के रूप में भी दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास आयरन सुक्रोज रहता है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का ऑप्शन है। तो ये सब चीजें जो हमारे पास मेडिकल सारी सुविधाएं हैं जिससे हम एनीमिया को प्रिवेंट कर सकें और बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकें। एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूं कि टैबलेट्स कैसे लेने होते हैं आयरन के। आयरन की टैबलेट्स कभी भी दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट से नहीं लेते, या चाय के साथ जो अल्कलाइन चीजें होती हैं उसके साथ नहीं लिया जाता, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो आयरन की टैबलेट्स आप जब भी ले रही हैं उसके साथ एक नींबू का पानी ले लीजिए, या पहले से एक विटामिन सी की एक च्यूएबल टैबलेट ले लीजिए, ताकि आयरन का रेट का एब्जॉर्प्शन अच्छा बढ़ जाए। अगर आप दूध के साथ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि आयरन की टैबलेट्स लेनी कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की टैबलेट दिन में मत लीजिए, थोड़ा शाम के समय या रात के समय सोते समय लीजिए, ताकि आपको जो हल्का फुल्का क्रैम्स आए वो आप डील कर सकें, क्योंकि थ्रू आउट आप दिन भर आपको अनइजीनेस लगेगा तो फिर आप आयरन टैबलेट वैसे ही लेना बंद करेंगी। तो आप एक पर्टिकुलर एक सुटेबल अपना टाइम ले लीजिए कि मुझे इतने समय आयरन की टैबलेट लेनी है, रात को सोते समय मैं लूंगी एक नींबू के पानी से या फिर एक ऑरेंज जूस के साथ या फिर विटामिन सी के साथ, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट काफी अच्छा रहता है।
1: डॉक्टर कंवलजीत, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारी श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू। धन्यवाद मैम।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे गर्भावस्था के दौरान सावधानियों पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थी प्रीति यादव। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं बातों बातों में, इसमें सुनिए जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान सभी परिवारों से 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। इस दौरान प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जनगणना कार्य में लगे सभी फील्ड कर्मचारियों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। श्रोताओं, इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना का कार्य किया गया, जिसमें नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में करीब 1,38,000 परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। श्रोताओं, जनगणना के तहत दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएंगी। इन्हें किसी से भी साझा नहीं किया जाएगा, यहां तक कि टैक्स, पुलिस या किसी तरह

0: की जांच में इस जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही इसका उपयोग किसी भी प्रकार के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इन आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल उपकरणों और माध्यमों से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है, बल्कि इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता भी सुदृढ़ हो रही है। श्रोताओं, जनगणना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। गोयल साहब, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: सर, ये जो जनगणना की प्रक्रिया है, जनगणना 2027 की, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो जनगणना 2027 हो रही है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? भारत में जो इससे पहले जो जनगणना हुई है उससे यह किस तरह से अलग है?
1: भारत की जनगणना वर्ष 2027 नाम से जो हो रही है, ये दो चरणों में होगी। पहला चरण वर्ष 2026 के मई महीने में और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होकर मार्च के 5वीं तारीख 2027 तक पूर्ण हो जाएगा हमारे भारत में जनगणना। यह जनगणना पूर्व की जनगणनाओं की भांति उनके नियम कानून जो बने हुए हैं उनकी तरह ही की जा रही है, परंतु इसमें कुछ विशेषताएं। सबसे पहली तो ये कि यह जनगणना प्रथम बार इस देश के इतिहास में पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होने वाली है। इसका मतलब जो हम कागज में लंबे लंबे फॉर्म लोगों के पास ले जाकर भरते थे, फिर उन फॉर्म को एक जगह वापस लाते थे, फिर उनके आधार पर डेटा कंप्यूटर में एंट्री करते थे और फिर इन फॉर्म्स को एक जगह एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाता था, वो अब आवश्यक नहीं होगा। पूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही आपके सामने एकत्रित की जा सकेगी और इसकी वजह से जो हमारे डेटा एनालिसिस है वो बड़ी तीव्र और तेज हो जाएगी। दूसरी विशेष सुविधा इस बार जो इस जनगणना में है वो यह है कि भारत के नागरिक को स्वयं अपने स्वगणना करने का विकल्प मिल रहा है। यह डिजिटल माध्यम और तकनीक की वजह से संभव हुआ है। तीसरी विशेषता वो यह है इस जनगणना की कि पहली बार भारत में कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है वो इस जनगणना का भाग है। हालांकि वो इस जनगणना के दूसरे चरण में आएगा, न कि जनगणना के प्रथम चरण में। इस प्रकार इस बार की जनगणना तीन रूप में इसकी विशेषताएं हैं और अन्य रूपों में हर जनगणना की तरह ये बड़ा महत्वपूर्ण जनगणना है। 16 साल के बाद ये जनगणना हो रही है। सामान्य तौर पर हर 10 साल में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाई। जनगणना हमारे देश का मूलभूत आंकड़ा होता है और हमारे अगले 10 साल जो भी बुनियादी सुविधाएं या हमें प्लानिंग करनी है उसका मूलभूत आधार इन्हीं जनगणनाओं का आंकड़ा होता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
0: सर, स्वगणना के बाद 1 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जो लोग स्वगणना के तहत पोर्टल में अपनी जानकारी दर्ज कर चुके हैं उनके घर जब प्रगणक आएंगे तो उन्हें क्या करना होगा?
1: 1 मई से 30 मई के बीच जब प्रगणक आपके घर आएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि सर या मैडम, आपने स्वगणना करी है या नहीं करी है। अगर आप कहते मैंने नहीं करी तो फिर वो कोई बात नहीं, वो आपका गणना आपके सामने कर देगा। और यदि आप कहते हैं कि आपने स्वगणना करी है तो वो आपसे SEID मांगेगा। ध्यान रखें, वो आपसे OTP नहीं मांग रहा, वो आपसे आपका SEID मांग रहा है जो 11 डिजिट का है, जो कि आपको SMS से मिला है। हमारा प्रगणक, वैसे बता दूं, जो भी आता है वह एक फोटोयुक्त ID कार्ड जो कि जनगणना से जारी किया जाएगा लेकर आएगा। जब ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है उसको और आपको SEID पूछता है, आप उसे SEID दीजिए। वो अपने ही मोबाइल पर आपके सामने आपका SEID एंटर करेगा और यदि SEID आपका सही है तो वह आपके द्वारा भरी गई जानकारी उसके मोबाइल पे प्रदर्शित होगी। वो आपको एक बार फिर से दिखा देगा। अगर आपको कोई संशोधन करना है, यदि त्रुटिपूर्ण कोई पूर्व में एंट्री हो गई है, कोई संशोधन करना है तो आप फिर कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं नहीं, मैंने जानकारी सही भर दी है, मैं संतुष्ट हूं, तो वह आपके सामने स्वीकार का बटन दबाएगा। स्वगणना का विकल्प देने का उद्देश्य यह है कि भारत के नागरिकों को अपनी जनगणना में भाग लेने का एक अवसर भी मिलेगा, हमारे प्रगणक के लिए डेटा एंट्री करना कम रहेगा और आप स्वयं अपना नाम भरेंगे तो उसमें स्पेलिंग एरर इत्यादि कम रहेंगे।
0: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय गोयल साहब से, जो IAS हैं और इस समय छत्तीसगढ़ में जनगणना निदेशक हैं। गोयल साहब, जनगणना निदेशालय द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं वे लोगों के घर घर जाएंगे तो किस तरह की जानकारियां उनसे मांगी जाएंगी?
1: जनगणना के जो लोग आपके घर आएंगे उन्हें प्रगणक कहते हैं। प्रगणक सामान्यतः आपके क्षेत्र के ही टीचर्स होंगे, सरकारी स्कूल के टीचर होंगे। शहरी क्षेत्रों में वो टीचर के अलावा कुछ सब इंजीनियर या हमारे नगरीय निकायों के कर्मचारी भी हो सकते हैं। वो जब आएंगे तो वो आपसे केवल

0: 33 सवाल पूछेंगे। ये 33 सवाल अलग अलग तरह के हैं। एक तो पहला आपके परिवार से संबंधित है, आपका मकान से कुछ संबंधित सवाल पूछेंगे कि यानी आपका मकान की छत पक्की है या नहीं, आपके घर में जो फर्श है वो पत्थर की है या मिट्टी की है या टाइल्स की है इत्यादि। इस प्रकार की सामान्य जानकारियां जिससे कि हमें हमारे देश के मकानों में किस तरह के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी आपके पास पीने का पानी है कि नहीं, शौचालय का विकल्प है या नहीं, इस तरह की जानकारी साझा करने का प्रयास सांख्यिकीय रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में एक क्षेत्र में कितने लोगों के पास पीने का जल का स्रोत नहीं है या कितने लोगों के पास अभी भी टॉयलेट नहीं। सांख्यिकीय आंकड़ों का एकत्रण किया जा रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों का। व्यक्ति विशेष ना आपके कोई स्वत्व कटेंगे ना आपके कोई स्वत्व जुड़ेंगे।
1: एक बात और, जब भी इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि अब क्या है कि धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं देश में, तो व्यक्ति के अंदर एक डर होता है कि जो प्रगणक आया है वो कितना वैध है, कि क्या वो वाकई सरकारी कर्मचारी है या कोई फर्जी व्यक्ति उसके द्वार पर आ गया है, और क्या उस समय इस प्रक्रिया के समय जो परिवार के लोग हैं उनको कोई दस्तावेज दिखाना है या इसका कोई शुल्क देना है, इसके बारे में बताएं।
0: आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो जनगणना आपके लिए मेरे लिए पूर्णतः निःशुल्क है। नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है कि निःशुल्क जनगणना हमारी हो। तो जनगणना में किसी प्रकार के शुल्क, फीस, पैसे इत्यादि, फाइन, कुछ भी नाम कह लो, कोई पैसे आपको कभी नहीं देने, आज ही नहीं कभी नहीं देने। दूसरी चीज, आपको अपने जनगणना में दी जाने वाली जानकारी के प्रमाणीकरण में एक भी दस्तावेज नहीं दिखाना है। ये दो चीजें मैं चाहूंगा आपके सारे श्रोता ये मन में बिठा लें कि जनगणना निशुल्क है और दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। जहां जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो हमारे द्वारा एक फोटो युक्त आईडी कार्ड लेकर आएगा, इसमें QR कोड भी होगा। तो जो श्रोताओं को लगता है कि उन्हें और सावधानी बरतनी है, जो वो आपको अपना परिचय पत्र दिखाएगा, पहचान पत्र दिखाएगा, उसमें जो QR कोड है उसे स्कैन कर लीजिए और वो स्कैन्ड QR कोड आपको दिखा देगा कि उस आदमी का नाम इत्यादि क्या है। अगर कोई फर्जी आदमी आता है तो ना तो वो QR कोड दिखा पाएगा, या QR कोड दिखाता है तो उसका QR कोड आपके द्वारा स्कैन किए जाने पर कोई भी हमारे डेटाबेस से डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
1: एक सवाल और है गोयल साहब, कि जब भी कोई व्यक्ति जानकारी देता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संशय भी होता है कि इसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी की निष्ठा का तो उसका हनन नहीं होगा या उसकी जानकारी का दुरुपयोग तो नहीं होगा, तो इसमें गोपनीयता किस तरह से बरकरार रखी जाएगी?
0: जनगणना में दी जाने वाली जानकारी की गोपनीयता दो आधार पर टिकी है। सबसे पहले विधिक आधार। जनगणना अधिनियम की धारा 15 कहता है कि आपके या मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी जनगणना में पूर्णतः गोपनीय है और यह जानकारी किसी भी पुलिस, इनकम टैक्स, किसी भी RTI, कोर्ट, चाहे कोई न्यायालय हो, किसी में साझा कभी नहीं की जा सकती। यह धारा 15 हमारे सेंसस अधिनियम के तहत पूर्णतः सुरक्षित है। अभी नहीं, आजादी के समय से यह धारा उसमें है। तो सबसे पहले है विधिक गारंटी कि आपकी जानकारी कभी साझा की नहीं जा सकती। दूसरी बात तकनीकी, क्योंकि हम इंटरनेट पे ये सब काम कर रहे हैं, मोबाइल पे पहली बार डिजिटल कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा सभी को कि भारत में अब आधार का डेटाबेस हो गया, UPI हो गया, इन सब के चलते हमारे देश में सरकारी तंत्र को डिजिटल डेटाबेस को चलाना और उनकी सुरक्षा तंत्र बनाए रखने का अनुभव हो गया है। उसी के तर्ज पर जनगणना में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को भी हमने काफी सुरक्षित बनाया है। सर्वप्रथम जो मोबाइल पे हमारा प्रगणक डेटा ले रहा है वहां पर सुरक्षा का एक लेयर है। सेकंड, जो डेटा उसके मोबाइल से ट्रांसमिट हो रहा है हमारे सर्वर में, उसमें हमने इंक्रिप्शन डाल रखा है और अन्य सुरक्षा की उसमें फीचर्स हैं। तीसरी चीज, जो हमारे सर्वर स्वयं है वो सर्वर भारत की सर्वोत्तम तकनीकी संस्थाएं यथा CERT हो गया, CDAC हो गया, इनके सारे तकनीकी मापदंडों को पार करके बहुत बड़े ही सुरक्षित तरह से रखा जा रहा है। तो आपकी हमारी जानकारी नॉट ओनली सुरक्षित है बल्कि सुरक्षित रहेगी, इसके बारे में विधिक रूप से और तकनीकी रूप दोनों से प्रावधान किए गए।
1: गोयल साहब, जो भारत देश है वो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है और जो जनगणना का काम होगा निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यापक और विराट कार्य है, तो इस कार्य को अंजाम देने के लिए सही तरीके से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो प्रगणक हैं, उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है?
0: जैसा आपने सही कहा, इतने व्यापक चीज को बिना अच्छी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के नहीं किया जा सकता। हमारी प्रशिक्षण अभी से नहीं, पिछले 3 महीनों से चालू है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 62,000 से भी ऊपर प्रगणक और पर्यवेक्षक चुने गए हैं, और इनके डाउट क्लियरेंस के लिए भी 3 लेयर पे डाउट क्लैरिफिकेशन के टीम्स बनाए गए हैं। जब हमारे प्रगणक फील्ड में जाएंगे, अवश्य रूप से कोई

0: संभावित तकनीकी विषय उठेंगे, किसी प्रकार के संदेह संशय उठेंगे, उसके लिए तीन स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तीनों स्तर पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स बनी हुई हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर, सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 1855 1855, ये हमारा नेशनल टोल फ्री नंबर है। कोई भी आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति जनगणना से जो जुड़ा हुआ जानकारी चाहता है, आप इस पे फोन करके हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। 30 मई तक हम अपनी पूरी छत्तीसगढ़ की आबादी की जनगणना का पहला चरण पूर्ण कर लेंगे।
1: एक अंतिम बात कि कोई भी अभियान होता है, मिशन होता है, उसमें जो सरकार है वो तो अपना पूरा जोर लगाती है, उसकी पूरी तैयारी होती है। जैसा आपने बताया कि एक शानदार सा प्रशिक्षण दिया गया है सभी प्रगणकों को, जो भी इससे संबद्ध लोग हैं उन्हें, लेकिन किसी भी अभियान की जो सफलता है वो तभी सुनिश्चित होती है जब उसमें जनता की भी वैसी ही सहभागिता हो, उसका भी सहयोग मिले। तो इस समय जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो इस जनगणना के कार्य में किस तरह से अपना सहयोग करें?
0: भारत के नागरिक होने के नाते मेरा अन्य भारतीय नागरिकों से, जो आपके श्रोतागण हैं, उनसे अपील है कि जनगणना हमारे देश की अगले 10 साल की आधारभूत संरचनाएं और नीतिगत निर्णयों का बेसिस या आधार बनती है। इसीलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जनगणना में अवश्य अपनी सही जानकारी दें, किसी भी भ्रम में ना आए। तो जब जनगणना का प्रगणक आपके घर द्वार आए तो उसको आमंत्रित करिए, उसे जानकारी अपने सर्वोच्च जानकारी के हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से जो जानकारी आपके पास है, कृपया उससे साझा करें और हमारे देश, हमारे क्षेत्र की उन्नति प्रगति का भाग बने। जनगणना को एक सेल्फी के रूप में समझिए, जनगणना अपने देश की एक सेल्फी है। इस सेल्फी में आपकी फोटो आ जाए, इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जनगणना में भाग लेना सुनिश्चित करें।
1: बहुत सुंदर बात आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, और निश्चित रूप से जो जनता है वो भी सहभागी बनेगी और इस कार्य को सफल बनाया जाएगा। आपको इस कार्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने हमें विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, उसके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक IAS श्री कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता के मुख्य अंश। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी
4: कार्यक्रम बातों बातों में का अनुप्रसारण अभी हम रायपुर केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 होने गए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बातों और गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। कार्यक्रम के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी प्रियंका। साथियों, आज 9 मई 2026 को पूरे देश में आयोजित की जा रही है नेशनल लोक अदालत। इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं।

साथियों, नेशनल लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोगों के छोटे छोटे कानूनी मामलों का समाधान आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य है आम नागरिक को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना। बैंक विवाद, बिजली पानी के बिल, पारिवारिक मामले, दुर्घटना क्लेम और कई अन्य मामलों का निपटारा यहाँ बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के किया जाता है। इससे जुड़ी कुछ और बातें हम आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म है दिल चाहता है, संरचना है जावेद अख्तर की और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

साथियों, लोक अदालत न केवल समय और धन की बचत करती है बल्कि आपसी भाईचारे और समझदारी को भी बढ़ावा देती है। यदि आपका भी कोई ऐसा मामला लंबित है जिसे आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है तो लोक अदालत आपके लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। तो आइए न्याय को आसान और सुलभ बनाने की इस पहल का हिस्सा बने और समाज में सौहार्द और विश्वास को मजबूत करें। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अंदान सामी की आवाज में। फिल्म है सलामे इश्क, गीतकार है समीर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

वेव और FMN पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी प्रियंका। साथियों, आज का दिन समर्पित है उस वीर योद्धा को जिसने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप की। साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वे अपनी अदम्य साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। साल 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, इस युद्ध में उनके साथ था उनका प्रिय घोड़ा चेतक, जिसकी वफादारी का और बहादुरी का कहानी हर कोई जानता है। साथियों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि

मान और स्वतंत्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भी संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने देश की गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आइए अब सुनते हैं पद्मावत फिल्म का ये गीत, श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाजों में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, 9 मई का यह पावन दिन समर्पित है उस महान व्यक्तित्व को जिनकी लेखनी ने

भावनाओं को शब्द दिए जिनके संगीत ने आत्मा को स्पर्श किया। हम बात कर रहे हैं विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर जी की जयंती की। साथियों, 1861 में कोलकाता में जन्मे गुरुदेव टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक थे। उनकी अमर कृति गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया और वे एशिया के पहले नोबेल विजेता बने। साथियों, गुरुदेव ने न सिर्फ साहित्य की दुनिया को समृद्ध किया बल्कि अपने विचारों से समाज को नई दिशा भी दी। जनगणमन के रूप में उन्होंने भारत को राष्ट्रगान दिया जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाता है। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सादगी, प्रेम और स्वतंत्र सोच कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए, इस खास अवसर पर हम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथी की आवाजों में धर्म कर्म फिल्म का ये गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत निर्देशन था आर डी बर्मन का।

साथियों, आज 9 मई के अवसर पर हम श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं मखमली आवाज़ के जादूगर तलत महमूद को। तलत महमूद साहब ने अपनी दर्द भरी और मधुर आवाज़ से हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत दिए। जाए तो जाए कहाँ और फिर वही शाम वही गम, जैसे उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 9 मई 1998 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। तो आइए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उनका एक सदाबहार नगमा।

0: अभी आप सुन रहे थे छाया फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में गीतकार थे सलील चौधरी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, आपको बता दें, हर वर्ष मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सुंदर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो मौसम के अनुसार हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह दिवस हमें प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन खूबसूरत पक्षियों की चहचहाहट का आनंद ले सकें। और आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में।

साथियों, अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है। गुंजन के आज के इस सुरमई सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातें, आज के गीत आपके दिलों में एक मीठी सी गूंज छोड़ गई होंगे। याद रखिए, जिंदगी में एक संगीत है, बस उसे महसूस करने की देर है। इसी प्यारे एहसास के साथ अपनी रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी कुछ नए सुरों, नई बातों और नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और FM पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जाँच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर

0: संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 1385 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये योजना जरूरतमंद परिवारों की बड़ी चिंता दूर कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक नवदंपत्ति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर कल रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही रेडक्रॉस की असली पहचान है। इस अवसर पर जूनियर और यूथ रेडक्रॉस सम्मेलन भी आयोजित हुआ। लोक नृत्य, चित्रकला और नाट्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडी लोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। वक्त है तापमान सूचना का। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अंबिकापुर शहर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान 1 मिलीमीटर वर्षा मापी गई। तापमान सूचना समाप्त। श्रोताएं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण समय होगा और रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का अनुप्रसारण किया जाएगा। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। थोड़ी ही देर में सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। दिन के 12 बजे मिश्रित गीत संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम सबरंग लेकर आएंगे हम।

नुसरत फतेह अली खां की आवाज में कार्यक्रम कव्वालियां हम पेश करेंगे दिन के 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण समय होगा दिन के 1:05 पर और शाम 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण समय होगा। बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:10 पर। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दिन के 1:40 पर। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम प्रस्तुत करेंगे रात 8:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा लेकर आएंगे हम दिन के 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5:00। कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद लेंगे आप शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम प्रस्तुत करेंगे शाम 5:30 पर।

शाम 6:20 पर लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का समय होगा। कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर, और कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा शाम 7:05 पर और रात 9:15 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर, और साथ ही होगी किसानवाणी शाम 7:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा फिल्म से, जावेद अली की आवाज़ में। गीतकार हैं रकीब आलम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं धुरंधर द रिवेंज फिल्म से। गायक कलाकार हैं खान साहब और शाश्वत सचदेव। गीतकार हैं नुसरत फतेह अली खान।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत है सलीम मर्चेंट, नीति मोहन और शेखर की आवाजों में। फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। गीतकार है अनिमिता दत्त और संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत है अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म है सोनू के टीटू की स्वीटी, शब्द रचना है कुमार की और धुन बनाई है रोचक कोहली ने।

कार्यक्रम नए तराने में लीजिए सुनिए अतरंगी रे फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह शासा तिरुपति की आवाजों में। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन है AR रहमान का।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharangan@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में प्रस्तुत है फिल्म साहो का ये गीत। गीतकार और संगीतकार है गुरु रंधावा, गायक कलाकार है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार।

अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के बाद हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दबंग 3 फिल्म का ये गीत, श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में। शब्द रचना है इरफान की और धुन बनाई है साजिद वाजिद अली ने।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म टाइगर जिंदा है से। गायक कलाकार हैं आतिफ असलम, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बरधा मान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं। हाँ। बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के।
1: हाँ।
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच।
1: हाँ।
0: और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। हाँ। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: है। हाँ, अब ये तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ। तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।
2: कार्यक्रम नए तराने का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। पलक मुच्छल और साथी की आवाजों में फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीतकार है हिमीश रेशमिया।

मीडियम व्यू पर अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण

0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11:05 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम के आरंभ में सुनेंगे हेमा सरदेसाई की आवाज़ में सपने फिल्म का गीत, लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है एआर रहमान ने। सुनने की फरमाइश की है देवरी से केआर साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, लेवई से गुलाबदास, दतरंगी से भागवत वर्मा, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे ने, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव ने। इसी गीत को सुनना चाहा है दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से। मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर ने। विश्वकर्मा नगर नागपुर से इस गीत की फरमाइश की है शैलेश गवहाणकर, वैशाली गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी ने। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर, भानु प्रिया दिवाकर। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। इस गीत की फरमाइश की है बाबा कुटी उफरा से प्रेम साहू, यमुना साहू, तुलसी साहू और हेमलता साहू ने। तो लीजिए, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं SP बाल सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। बोल हैं देव कोहली के, संगीत निर्देशन हैं राम लक्ष्मण का।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

मीडियम व्यू पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अगला गीत है सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म अग्निपथ से, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से सजाया है अजय और अतुल ने। गीत की फरमाइश की है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से इस गीत को सुनना चाहा है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र सेन ने। चांडूर बिस्वा तालुका नांडूरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से इस गीत की फरमाइश की है नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से ने। इसी के साथ ही इस गीत को सुनना चाहती हैं मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहट्टी बरेली से इस गीत की फरमाइश की है विनेश कुमार रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। खमरिया बिलासपुर से इस गीत को सुनना चाहा है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीप कुमार ने।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: कार्यक्रम आपकी पसंद में अगले गीत की फरमाइश आई है अडार नानघाट से। माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी वर्मा, भूपेश वर्मा और दीपेश वर्मा की। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह ने। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। सपना संगीता रोड इंदौर से इस गीत की फरमाइश की है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंगेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो लीजिए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में करण अर्जुन फिल्म का गीत बोल हैं इंदिवर के। संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अब ये तो शुरू होएगी सहे।
0: हाँ
1: हुँ?
0: तो नागा तो देखी भाई।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:15 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दिल्ली 6 से जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं यार रहमान। सुनने की फरमाइश आई है वारणा रेडियो श्रोता संघ वारणा नगर पन्हाला जिला कोल्हापुर से, अमित नारायण लोंढे, विजय नारायण लोंढे, अर्चना अमित लोंढे, स्वाति विजय लोंढे, मीनाक्षी नारायण लोंढे और चारवी विजय लोंढे। देवीगंज रोड अंबिकापुर से इस गीत को सुनना चाहा है राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से गीत की फरमाइश की है राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, लेवाखेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो, उषा सोरना खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। इसी गीत को सुनना चाहा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाने। श्री सिंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से इस गीत की फरमाइश की है मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन ने। तो लीजिए सुनते हैं आप सभी के पसंद का ये गीत।

0: मीडियम व्यू में आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: के लिए एक बेसिन के रूप में काम
2: पंडित छन्नूलाल मिश्र का गाया राग ठुमरी में मिश्र देश। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण होगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के संदेश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को

0: जंगल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। तोके क्षेत्र के जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्च अभियान के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री में 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छिपा कर रखी गई थी। बालोद जिले के डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डौंडी लोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। लीजिए आप सुनते हैं शाहीन इकबाल द्वारा लिखा हुआ ये गीत अभिजीत की आवाज में। संगीत निर्देशन है सप्तऋषि का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
1: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की यदि ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही।
1: हे
0: तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अभी तो शुरू है कि सहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम के अंत में लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। संगीत निर्देशन है बासु चक्रवर्ती का।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। पेश है कव्वालियों का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नुसरत फतेह अली खां के आवाज़ में कुछ कव्वालियाँ। लीजिए सुनते हैं पहली कव्वाली।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर अभी आप सुन रहे हैं कव्वालियों का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज में ये कव्वाली।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एन एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जल डमरू मध्य के

0: पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बात में लीजिए अब सुनते हैं खेत में नमी संरक्षण तकनीक विषय पर सामयिक सुझाव।
2: किसान भाइयों और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि फसल सूख रही है तो ज्यादा पानी दे दो, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या पानी की कमी की नहीं बल्कि नमी के संरक्षण की कमी है। मिट्टी में नमी रुक नहीं पा रही, यही असली चुनौती है। कारण क्या है? तेज धूप से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जमीन खुली रहती है जिससे नमी जल्दी उड़ जाती है। जैविक पदार्थ की कमी से मिट्टी पानी पकड़ नहीं पाती। इसके समाधान के लिए सबसे पहला उपाय है मल्चिंग, यानी मिट्टी को ढकना। मल्चिंग का मतलब है मिट्टी को पूरी तरह से ढक देना। सूखी घास, पत्ते, भूसा या फसल अवशेष के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इससे होता यह है कि सूरज की सीधी किरण मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, पानी का वाष्पीकरण 40-60% तक कम हो जाता है, खरपतवार भी कम उगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने टमाटर या मिर्च की खेती की है। अगर आप पौधों के चारों ओर भूसा डालते हैं तो आपको कम पानी देना पड़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरा समाधान है कम पानी सही समय। सुबह जल्दी या शाम को सिंचाई करें। दोपहर में सिंचाई करने से पानी का बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसे तरीके अपनाएं तो और बेहतर होगा। याद रखिए, ज़्यादा पानी देना समाधान नहीं, सही समय पर देना ही समाधान है। तीसरा समाधान है मिट्टी को जिंदा बनाइए। मिट्टी अगर जीवित है तो वह नमी को पकड़कर रखेगी। इसके लिए गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इनका उपयोग करें। यह सिर्फ खाद नहीं, यह मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। चौथा समाधान है मेड़बंदी और खेत का प्रबंधन। खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाएं, पानी को बहने से रोकें, ढलान के अनुसार जुताई करें। इससे बारिश का पानी भी खेत में रुकेगा और ज़मीन रिचार्ज होगी। कुल मिलाकर किसान भाइयों, अगर आप नमी बचाना सीख गए तो सूखा भी आपकी खेती को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भविष्य की खेती पानी नहीं, नमी प्रबंधन पर निर्भर है। नमी संरक्षण के लिए कुछ और बातों पर गौर करना जरूरी है। पहली बात, हमारी मिट्टी की ऊपरी 5-10 सेंटीमीटर परत से ही सबसे ज़्यादा नमी उड़ती है। इसलिए हम इस परत को ढक दें या ढीला रखें तो नमी का नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी बात, जिन खेतों में जैविक कार्बन यानी ऑर्गेनिक मैटर 1% बढ़ता है, वहाँ पानी रोकने की क्षमता हजारों लीटर प्रति हेक्टेयर तक बढ़ जाती है। इसका मतलब खाद डालना सिर्फ पोषण नहीं बल्कि पानी बचाना भी है। तीसरी बात, गहरी जुताई गर्मी में करने से मिट्टी के नीचे की परत खुलती है जिससे बारिश का पानी अंदर तक जाता है और लंबे समय तक नमी बनी रहती है। चौथी बात, अगर आप फसल के बीच बीच में हल्की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत टूट जाती है और कैपिलरी एक्शन कम हो जाता है, यानी नीचे का पानी ऊपर आकर उड़ नहीं पाता। और सबसे ज़रूरी बात, खेत को कभी भी खाली ना छोड़ें। अगर मुख्य फसल नहीं है तो ढेंचा, सनई या कोई कवर क्रॉप ज़रूर लगाएं, इससे ज़मीन ढकी रहती है और नमी

0: सुरक्षित रहती है। इसलिए किसान भाइयों और बहनों, पानी बचाना भी जरूरी है और नमी का संरक्षण भी जरूरी है। समझने वाली बात यह भी है कि रेतीली यानी बलुई मिट्टी में पानी जल्दी नीचे चला जाता है और नमी टिकती नहीं है, जबकि चिकनी यानी काली और मटियार मिट्टी में पानी को ज़्यादा समय तक रोक कर रखने की क्षमता होती है। इसलिए अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो आपको ज़्यादा बार लेकिन कम मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा हवा भी नमी का बहुत बड़ा दुश्मन है। तेज़ हवा चलने से मिट्टी की नमी तेज़ी से उड़ती है। इसके समाधान के लिए खेत की चारों ओर पेड़ या झाड़ियाँ लगाकर एक अवरोध बनाएं। इसके अलावा इससे नमी का नुकसान 20 से 30% तक कम हो सकता है। बहुत घनी बुआई करने से पौधे आपस में पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और बहुत ज़्यादा दूरी रखने से ज़मीन खुली रहती है जिससे नमी उड़ जाती है। इसलिए संतुलित दूरी बहुत ज़रूरी है।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे खेत में नमी संरक्षण तकनीक विषय पर सामयिक सुझाव। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

ज़रा आंखें बंद करिए और सोचिए, आपके घर के ऊपर से कोई बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके उड़ रहा है। ना उसे बॉर्डर की चिंता ना मौसम की परवाह। ये हैं हमारे मेहमान प्रवासी पक्षी। आज हम इन्हीं नन्हे नन्हे पथिकों के बातें करेंगे, इनकी हिम्मत की, इनके दर्द की और अपनी जिम्मेदारियों की। तो आइए चले पंखों के संग एक अनोखी यात्रा पर। स्वागत है बहनों आप सभी का आपके आंगन में यानी घर आंगन कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी की सखी सहेली प्रीति। सखियों, प्रवास का मतलब है घर बदलना और पक्षियों का प्रवास एक प्राकृतिक चमत्कार है। ये पलायन भोजन प्रजनन और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिक परिस्थितियों और आवासों की तलाश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। जब सर्दी में साइबेरिया मंगोलिया यूरोप के देशों में बर्फ जम जाती है, खाना खत्म हो जाता है, तो लाखों पक्षी अपना घर छोड़ देते हैं। सखियों, पक्षियों में तेजी से और लंबी दूरी तक उड़ने के लिए सही आकृति विज्ञान और शरीर विज्ञान होता है। अक्सर उनकी यात्रा एक थका देने वाली होती है, जिसके दौरान वो अपनी सीमा तक जाते हैं। एक अनुमान ये है कि एक छोटी चिड़िया आर्किटेक्टन हर साल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, आना जाना मिलाकर करीब 70,000 किलोमीटर। यानी जिंदगी में ये चांद पर जाने आने जितना सफ़र कर लेती हैं। वास्तव में ये आश्चर्यजनक है ना बहनों, कि कैसे प्रवासी पक्षी पिन पॉइंट सटीकता के साथ नेविगेट कर सकती हैं। वास्तव में प्रवासी पक्षियों को अपने मार्ग कैसे मिलते हैं ये पूरी तरह से समझ में तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये दिखाया गया है कि वो दिन में सूर्य, रात में सितारों और किसी भी समय भू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उन्मुख होने में सक्षम है। पलायन एक खतरनाक यात्रा भी है। आंधी, तूफान, भूख, प्यास, ऊंची इमारतें और बिजली के तार, ये सब बाधाओं का सामना करना होता है इन्हें, फिर भी प्रवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नस्ल बचानी है, इससे बड़ी जीवन की जिद क्या होगी। वाकई में ये पक्षियां हम इंसानों को बहुत कुछ सीख देती हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आंधी तूफान की तरह आएंगे ही, लेकिन उससे डरकर वहीं रुकना नहीं है, बल्कि लड़कर आगे जाना है। सखियों, ये प्रवासी पक्षी सिर्फ हमारे मेहमान नहीं, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के डॉक्टर हैं। हाँ, जैसे जो भी ये फल खाते हैं उनके बीज जंगल में गिराते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं। एक बतख एक

दिन में हजारों मच्छर के लार्वा खा जाती है, जो डेंगू मलेरिया से बचाती है। तालाब के कीड़े मकोड़े खाकर पानी का संतुलन बनाते हैं ये पक्षियाँ। साथ ही ये पक्षियाँ हमें एक और बात सिखाते हैं कि सरहदें इंसानों ने बनाई हैं, प्रकृति ने नहीं। रूस के पक्षी, चीन के पक्षी, भारत के पक्षी सब हमारे आसमान में एक साथ उड़ते हैं। ना लड़ाई, ना नफरत, बस जीने की चाह। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आइए वादा करें कि हम इन नन्हे मेहमानों का घर नहीं उजाड़ेंगे, बल्कि सजाएंगे। अगली बार जब सुबह कोई अजनबी चिड़िया की आवाज़ सुने तो मुस्कुरा कर कहिएगा, आओ पंछी, मेरा क्षेत्र तुम्हारा ही घर है। आइए अब सुनते हैं पंछी पर ही आधारित ये गीत, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। संगीत अनु मलिक का, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और फिल्म है रिफ्यूजी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगला क्रम है शक्ति अभिव्यक्ति का। आइए आज एक नई शक्ति से परिचित होते हैं और सुनते हैं ये क्रम।

बहुत बहुत स्वागत है सखियों, आप सभी का शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में। आज हम बात करेंगे उस लौह महिला की जिसने साबित कर दिया कि महिलाएं आसमान तो क्या सिस्टम भी तोड़ सकती हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला आईएएस अफसर अन्ना राजम मल्होत्रा जी की। सखियों, आज तो लड़कियां यूपीएससी की तैयारी करती हैं, कोचिंग जाती हैं, पर ज़रा सोचिए 1950 का दौर। देश आज़ाद तो हो गया था पर महिलाओं के लिए आज़ादी सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित थी। उसी वक्त केरल के एक छोटे से गांव में जन्मी एक लड़की ने ठान लिया कि वो कलेक्टर बनेंगी। नाम था अन्ना राजम जॉर्ज। साल 1951 अन्ना जी ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। पूरे देश में हड़कंप मच गया, पहली महिला आईएएस। पर असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। इंटरव्यू बोर्ड के एक बड़े अफसर ने साफ कह दिया कि मैडम, ये पुरुषों का काम है, आपको शादी करनी है, बच्चे संभालने हैं, आपसे फील्ड में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलेगा, बेहतर है कि आप फॉरेन सर्विस या सेंट्रल सर्विस चुन लें। पर अन्ना जी डरी नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि सर, मैं आईएएस ही चुनूंगी और

साबित करूंगी कि एक महिला भी जिला चला सकती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें घुड़सवारी सीखनी पड़ी, बंदूक चलानी पड़ी। लोग कहते थे ये क्या कलेक्टर बनेंगी, पर अन्ना जी ने हार नहीं मानी। दूसरा झटका उन्हें तब लगा जब पहली पोस्टिंग मद्रास स्टेट में मिली। वहाँ के मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालचारी। उन्होंने फाइल रोक दी, बोले मैं एक महिला को जिले की कमान नहीं दे सकता, दंगे फसाद में वो क्या करेंगी। अन्ना जी सीधे उनसे मिलने पहुंच गई, बोली सर मुझे 6 महीने का मौका दीजिए, अगर मैं नाकाम रही तो खुद इस्तीफा दे दूंगी। राजा जी ने मौका दिया और अन्ना जी ने पहले 6 महीने में इतना शानदार काम किया कि राजा जी उनके मुरीद हो गए। सखियों, अन्ना जी होशंगाबाद की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी। वहाँ के किसानों की समस्या सुनी, नहर का पानी नहीं पहुँच रहा था, खुद जीप लेकर खेतों में गई, इंजीनियरों को फटकार लगाई और 2 महीने में पानी पहुंचवाया। भारत का पहला कंप्यूटरकृत उन्होंने पोर्ट बनाया। हाँ सखियों, नवाहा शिवा पोर्ट मुंबई की पूरी प्लानिंग अन्ना मैडम ने की थी। सन 1982 में जब कंप्यूटर का नाम भी कोई नहीं जानता था, तब उन्होंने पोर्ट को आधुनिक बनाया। सन 1989 एशियन गेम्स में इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया और कहा अन्ना तुम स्टेडियम बनवाओ, और 2 साल में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खड़ा कर दिया। साल 1989 में ही भारत सरकार ने उनके प्रशासनिक कामों के लिए देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया। सोचिए सखियों, उस दौर में एक महिला को ये सम्मान मिलना कितनी बड़ी बात थी। आज भी लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में नई महिला अफसरों को अन्ना मैडम की कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि अन्ना जी ने रास्ता बनाया, तुम उस पर चलो। उनकी शादी आरएन मल्होत्रा से हुई, जो खुद आरबीआई के गवर्नर बने। सखियों, ये थी अन्ना राजम मल्होत्रा। ना सुनकर रुकना नहीं है, ये उन्होंने हमें सिखाया। दुनिया हजार बार बोलेगी महिलाओं से नहीं होगा, पर हमें करके दिखाना है। काम बोलता है। अन्ना जी ने भाषण नहीं दिए बल्कि फाइलों से जवाब दिया। परिवार और करियर साथ चल सकते हैं, बस अपना स्टैंड क्लियर रखो, ये उन्होंने हमें सिखाया। याद रखिए सखियों, जब एक महिला उठती है तो सिर्फ वो नहीं उठती बल्कि पूरी पीढ़ी उठती है। आज का शक्ति अभिव्यक्ति बस यहीं तक। अगले शनिवार आप एक नई शक्ति से परिचित होंगे।

अब सुनते हैं फिल्म खामोशी से लिया गया ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, जतिन ललित का संगीत और गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी।

अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर, जो है व्यंजन विधि। सखियों, भीषण गर्मी और तपती लू के बीच में जब शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, तो ऐसे में देसी प्रोटीन शेक कहा जाने वाला सत्तू शरबत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। हाँ, सत्तू की तासीर स्वाभाविक रूप से ठंडी होती है, जो पेट की जलन को शांत करने और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसमें मौजूद हाई फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देने, जिसकी वजह से वजन घटाने वालों के लिए भी आदर्श है ये। बिना चीनी, बिना किसी भारी मसाले के तैयार ये शरबत न केवल आपको हाइड्रेट रखता है, बल्कि चिलचिलाती धूप में भी आपको तरोताज़ा महसूस कराता है। तो चलिए जानते हैं सत्तू के शरबत को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें सत्तू 4 बड़े चम्मच, ठंडा पानी 2 ग्लास, काला नमक स्वाद के अनुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, ताज़ा पुदीना पत्तियां 5 से 6 जो कुचली हुई हों, कुटी हुई हों, और बारीक कटी हरी मिर्च और प्याज। अब जानते हैं इसे बनाने का तरीका। एक जग में सत्तू डालें और थोड़ा ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि कोई भी उसमें गुठली ना बने। अब बचा हुआ ठंडा पानी

निकालें और अच्छी तरह फेंट लें। इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर और नींबू का रस मिलाएं। कुचली हुई पुदीना पत्तियां भी डालें जो ठंडक और खुशबू को बढ़ा देंगी। अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटा प्याज और हरी मिर्ची डालकर इसे और भी चटपटा बना सकते हैं। बर्फ के टुकड़े डालें और तुरंत सर्व करें। चलिए अब सुनते हैं ये गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन कोड है 497001। अब मुझे यानी अपनी सखी प्रीति को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:40 हुए हैं, वक्त हो चला है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल की गूंज का।

श्रोताओं, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म माय नेम इज खान से शफाकत अमानत अली की आवाज में। बोल हैं निरंजन अयंगर के। गीत की फरमाइश की है सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने। मेन रोड तिल्हारा से इस गीत को सुनना चाहा है प्रकाश पुहारकर, नर्मदा पुहारकर, कुमारी सुजाता पुहारकर। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नागेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता पलक लुबना और यश मंसूरी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा ने। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। छतरी तालाब अमरावती से इस गीत को सुनना चाहा है साधना रानी किशोर गुप्ता ने। ग्राम लसुड़िया पाटा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र टांगी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी। तो आप सबकी फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं ये गीत।

माय नेम इज़ खान फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए अब सुनते हैं तुम मिले फिल्म का ये गीत। आवाज़ है नीरज श्रीधर की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का, लिखा है सईद कादरी ने। इस गीत को सुनना चाहा है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। आकाशनगर बस्तर से के पुष्पा, कृष्णा कुमार। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम

हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश, ग्राम पहारा अहिवारा, जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोड़, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, शाहूनगर यवतमाल से इस गीत को सुनना चाहा है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर ने। इसी के साथ ही रोशनी मनवर और बीबी प्रियांशी, गांव टोरोवाल, जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमार थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से इस गीत की फरमाइश की है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने, दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो लीजिए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगली फरमाइश आई है जिलाधार से। सुमित राय, संगीता राय, गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, ये हमारे श्रोता हैं दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से। राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। वडिंगखेड़ा पंजाब से इस गीत को सुनना चाहा है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। धनुरा बस्तर छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु, रीशु, दुर्गेश कुमार, अक्षय कुमार और अभिषेक नायडू ने। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है रोहित जयलक्ष्मी ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंदेश कुमार और चंदकला शशिकांता प्रजापति। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े और भारती रंभाड़े। जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, चैतन्य कुमार, शिविक, अमृता और संतोष ने। इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं मर्डर फिल्म का ये गीत आमिर जमाल की आवाज़ में। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में बोल हैं सईद कादरी के।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आई है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू की, रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, नेहरू चौक पैठण से इस गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव और सोनल जाधव ने, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की है तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन ने, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाश बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे,

साफिया अरहान खोखर और मोहम्मद हसनैन पवार। इन सब की फरमाइश पर लीजिए पेश है सोनू निगम की आवाज़ में ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत। बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन हैं विशाल और शेखर का।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। इस गीत की फरमाइश आई है नांगचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बीबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा माखीजा कुटुंब। धनौली तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। सौंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। बिड़री मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची तनु करमरकर। देवीगंज रोड अंबिकापुर से इसी गीत को सुनना चाहा है राजकुमार ने भवानी, संगीता आकाश आयुषी, सागर यशी, हनी पूजा सीता एवं इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। तो इनकी फरमाइश पर लीजिए अब सुनते हैं फिल्म कल।

0: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारतের सार्वभौमत्व ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की 2री राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री

0: स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4th और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी

पतली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अभिजीत की आवाज में। बोल है नुसरत बदर के, संगीत निर्देशन है सप्तऋषि का,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। लीजिए आप सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल। लिखा है मुमताज रशीद ने, संगीत निर्देशन है पंकज उदास का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गीत गंधा के अंत में लीजिए अब सुनते हैं अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत। बोल हैं साहिर लुधियानवी के, संगीत निर्देशन है अदनान सामी का।

अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। बोलते साहिर लुधियानवी के संगीत निर्देशन था अदनान सामी का। इसी के साथ ही गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या होगा शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे शाम 6:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधली में शाम 6:20 पर आप सुनिएगा कुछ सरगुजिया लोकगीत। कलाकार होंगे पियर साय और साथी। कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर और कार्यक्रम चित्रपट संगीत में रात्रि 9:15 पर। ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसी के अंतर्गत शाम 7:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम किसानवाणी। इसमें आप सुनेंगे नकदी फसल लोकगीत मंडी भाव मौसम की जानकारी और आज कर सवाल। रात्रि 8 बजे आप सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। इसी के साथ ही हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। इस दौरान आप हमारे FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हमसे जुड़े रह सकते हैं जिसमें हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का अनुप्रसारण करेंगे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 4:58 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, पंडोपारा, सुखरी भंडार, सरगा, शिवनाथपुर, ललितपुर, कंडराजा, बैरडाण, पतरापारा, दांतीढाब, घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गाँव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये आम गाँव, पोटिया, क्रोंधा, प्रेमनगर, बेहरामार, औरानारा, कुड़ेकेला, सिंघी छाप, डोंगा भावना, हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुमारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों

0: की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली पथरी पाली दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरी ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर डडई पानी बोतलधारा खोला पारा जिडार सिंहार छिंदौला पायलीखंड लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी बोडापाल बेगरपाला हरदीबाय पंडरी पानी नगरार ओर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या नीलम कटारिया के स्वर में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज में ये गीत। इस भक्ति गीत के पश्चात आइए सुनते हैं विनोद सहगल की आवाज में ये भक्ति रचना।

भजन संध्या के अंत में लीजिए सुनिए ओम व्यास की आवाज में ये भक्ति गीत।

आप सुन रहे थे गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

मुस्कान किसी की मोहताज नहीं होती, ये तो दिल से दिल तक की बात होती है। जो हर हाल में मुस्कुरा दे वही जिंदगी की असली जीत है। नमस्कार दोस्तों, हंसी खुशियों और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर और आज हम बात करेंगे उस अनमोल चीज़ की जो बिना पैसे के भी सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी को पढ़ाई की चिंता है तो किसी को करियर की, किसी को अपने सपनों की फिक्र है तो कोई रिश्तों को संभालने में लगा है। लेकिन इन सब के बीच

सब ठीक होगा तब मुस्कुराएंगे। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, जो मुश्किल वक्त में भी मुस्कुरा लेता है वही जिंदगी को सही मायने में जीना जानता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत साधारण होते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर दिल को अच्छा लगता है। और दोस्तों, मुस्कान सिर्फ हमें खुश नहीं करती, ये सामने वाले के दिल को भी सुकून देती है। कभी किसी उदास इंसान के पास जाकर प्यार से मुस्कुराकर बात कीजिए, देखिए उसका मन कितना हल्का हो जाता है। आज सोशल मीडिया पर लोग हजारों फोटो डालते हैं, फिल्टर लगाते हैं, लेकिन असली मुस्कान कहीं खो जा रही है। लोग ऑनलाइन तो हैप्पी दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत अकेले होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से खुश रहना सीखें। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन चेहरे पर मुस्कान ना हो तो उसकी खुशियाँ अधूरी लगती है, और अगर इंसान के पास ज़्यादा कुछ ना भी हो लेकिन वो दिल से मुस्कुराता हो तो वो हर किसी का दिल जीत लेता है। दोस्तों, आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग परेशान हो जाते हैं। कभी नंबर कम आ जाए तो उदासी, दोस्त बात ना करे तो उदासी, कोई सपना पूरा ना हो पाए तो उदासी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगर रात है तो सुबह भी ज़रूर आएगी, इसलिए मुश्किलों से डरिए मत, उनका सामना मुस्कुरा कर कीजिए, क्योंकि मुस्कान वो ताकत है जो टूटे हुए इंसान को भी फिर से खड़ा कर सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो हमेशा उदास रहती थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। एक दिन उसने सड़क पर एक छोटी बच्ची को देखा जो पुराने कपड़ों में भी हंस रही थी। उस लड़की ने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? बच्ची मुस्कुराकर बोली, क्योंकि दुखी रहने से ज़िंदगी आसान नहीं होती। दोस्तों, ये छोटी सी बात बहुत बड़ा संदेश देती है। खुश रहना परिस्थितियों पर नहीं हमारी सोच पर निर्भर करता है। याद रखिए, आपकी मुस्कान सिर्फ आपकी नहीं होती, ये आपके परिवार की खुशी होती है, आपके दोस्तों की ताकत होती है, और किसी उदास इंसान के लिए उम्मीद की किरण भी बन सकती है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, चाहे हालात जैसे भी हों मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बांटेंगे। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब सुनें ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बर्फी से, जिसमें आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल, प्रीतम और निखिल पॉल की। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे स्पेशल क्रम एक कलाकार की ओर।

खुशियों और उमंगों से भरे इस खूबसूरत माहौल में आप सभी का दिल से स्वागत है अपने कार्यक्रम एक कलाकार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिनकी मुस्कान में सादगी है, जिनकी अदाओं में नज़ाकत है और जिनके डांस में ऐसी ऊर्जा है कि हर कोई झूम उठे। लेकिन नाम अभी सस्पेंस में रहेगा। पहले सुनते हैं उनका एक शानदार गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो दोस्तों, जिस कलाकार की हम बात कर रहे थे वो हैं करिश्मा कपूर। दोस्तों, करिश्मा कपूर 90 के दशक का वो नाम जिसने हर दिल पर राज किया। इनका जन्म 25 जून 1974 को हुआ और ये बॉलीवुड के मशहूर कपूर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता कपूर हैं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र सिर्फ 17 साल में फिल्म प्रेम कैदी से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके लुक्स और स्टाइल पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदला, बेहतर बनाया और धीरे धीरे बन गई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। दोस्तों, करिश्मा कपूर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप मेहनत करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आगे हम इनके बारे में और भी कई बातें करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं ये सुपरहिट गीत।

दोस्तों, करिश्मा कपूर का डांस स्टाइल उस दौर में ट्रेंड बन गया था। उनके स्टेप्स, उनके एक्सप्रेशन सब कुछ यूनिक था। अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने करीब 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, और सिर्फ काम ही नहीं बल्कि हर किरदार में जान डाल दी। उन्हें फिल्म दिल तो पागल है के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसके अलावा

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, करिश्मा कपूर ने हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया बल्कि अपने किरदारों के जरिए हमें हंसाया, रुलाया और जिंदगी के कई रंग दिखाए। और अब पेश है आज की क्रम का ये आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कृष्णा से, जिसमें आवाज़ है अभिजीत की और गीतकार हैं आनंद राज आनंद और संगीतकार हैं अनु मलिक।

दोस्तों, आज हमने जिस कलाकार को जाना वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक याद है, एक एहसास। करिश्मा कपूर, एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत, टैलेंट और मुस्कान से हर दिल में अपनी अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ ही हमारा आज का क्रम एक कलाकार बस यहीं तक।

तो दोस्तों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये खूबसूरत सफ़र आपको पसंद आया होगा। इसी प्यार और अपनापन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवानी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे।

0: इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोबि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। आज का आलेख है मानसिक शांति। संकलन और वाचन स्वर धरती प्रिया का है।
3: मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे अनमोल चीज है तो वह है मानसिक शांति। धन, प्रसिद्धि, सफलता और सुविधाएं जीवन को आराम दे सकती हैं, परंतु मन की शांति ही जीवन को सच्चा सुख देती है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, प्रतिस्पर्धा या तनाव से घिरा हुआ है। ऐसे समय में मानसिक शांति का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मानसिक शांति का अर्थ केवल चुप रहना या अकेले बैठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर संतोष, धैर्य और सकारात्मकता को महसूस करना है। जब मनुष्य अपनी मन की उलझनों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीख लेता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति ही उसे जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देती है। भारतीय साहित्य के महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन मानसिक शांति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे मानते थे कि मनुष्य को प्रकृति के करीब रहना चाहिए।

0: क्योंकि प्रकृति मन को सुकून देती है। वे घंटों पेड़ों की छांव में बैठकर लेखन किया करते थे। उनकी कविताओं और गीतों में भी मानसिक शांति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उनका प्रसिद्ध विचार था कि मनुष्य को बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया को समझना चाहिए। यही सोच उन्हें कठिन समय में भी शांत और रचनात्मक बनाए रखती थी। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। परीक्षा का दबाव, नौकरी की चिंता, रिश्तों में दूरियां और भविष्य का डर मनुष्य के मन को अशांत बना देते हैं। सोशल मीडिया ने भी लोगों के भीतर तुलना और असंतोष की भावना बढ़ा दी है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, लेकिन इस दौड़ में वह अपने मन की शांति खोता जा रहा है। मानसिक शांति के बिना जीवन की सारी उपलब्धियां अधूरी लगती हैं। मानसिक शांति पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को स्वयं से प्रेम करना सीखना चाहिए। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं, तब मन हल्का महसूस करता है। इसके अलावा योग, ध्यान, संगीत और प्रकृति के साथ समय बिताना भी मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। परिवार और मित्रों के साथ खुलकर बातचीत करने में भी मन का बोझ कम होता है। जो हमारे पास है उसी में खुशी ढूंढना ही मानसिक शांति है। वास्तव में मानसिक शांति कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे मनुष्य अपने विचारों और व्यवहार से प्राप्त करता है। यदि मन शांत हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन हमें यही सिखाता है कि दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, परंतु अपने भीतर की शांति बनाए रखना यही सच्ची कला है। मानसिक शांति पाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ दे। आवश्यकता केवल इतनी है कि वह स्वयं को समझना सीखे। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी खुशी भूल जाते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। क्षमा करना, कम अपेक्षा रखना और वर्तमान में जीना मानसिक शांति की ओर बढ़ने वाले छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम हैं। संगीत भी मन को शांति देता है। जब मन बेचैन हो तब एक मधुर गीत, एक अच्छी पुस्तक या कुछ पल की खामोशी भी मन को नया सहारा दे सकती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मानसिक शांति जीवन का वह दीपक है जो अंधकार भरे समय में भी मनुष्य को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जिस व्यक्ति ने मन की शांति पा ली, उसने मानो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का आलेख था मानसिक शांति, संकलन और वाचन सर धरती प्रिया,
2: रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज छत्तीसगढ़ के कतकू न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के होइस आयोजन। न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में होइस आज बड़का रद्दा हादसा। ये घटना में कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के होगे मौत। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हुईस। एबेरा में न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए गिस, जेमा आपराधिक प्रकरण के संगे संग मोटर दुर्घटना प्रकरण, बिहाव ले जुड़े परेशानी, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधित प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधित प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी ले संबंधित प्रकरण हा शामिल रहीस। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगा के लंबा बेरा के मामला सुनवाई करे जाही। पक्षकार मनला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 31 मई तक गूगल फारम में देना होही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग हा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम औ उपचुनई के घोषणा कर दे है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह बताइन कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई ले शुरू हो ही जो उनके 4 जून तक चल ही।

0: नामांकन पत्र 11 ले 18 मई तक भरे जाही, जेकर जांच 19 मई के होना है और नाव वापस लेके आखिरी तारीख 21 मई राखे गए हैं। मतदान हा एके चरण मा 1 जून के होना है, जबकि परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयुक्त हा बताइन है कि नगरी निकाय चुनई हा ईवीएम ले दलीय आधार मा और पंचायत चुनई हा मत पेटी के माध्यम ले गैर दलीय आधार ले कराए जाही। चुनई वाले जगह मा आदर्श आचार संहिता लागू हो गए है। जानबा के अनुसार नगरी निकाय मा अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत मा जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनई कराई जाही। राज्य सरकार के सुशासन तिहार के चलत बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम पंचायत झुमका मा जन समस्या निवारण के शिविर के आयोजन हुईस। इस शिविर मा राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा हा शामिल हुईन। ए बेरा मा श्री वर्मा हा हितग्राही मनला ट्रैक्टर के चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्री भेंट करें। इस शिविर में 2300 ले ज्यादा आवेदन मिले रहीस, जिमा ले 272 आवेदन के मौका मही निराकरण करेगी से। छत्तीसगढ़ में अभी मकान सूचीकरण और मकान के गिनती के काम चलत है। इही कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिला के कलेक्टर कुलदीप शर्मा हा आज मुंडा गांव में प्रगणक मन कोती ले करे जात जनगणना के काम के निरीक्षण करें। ओमन हा प्रगणक मन ले मोबाइल लेके खुदे एक झीन मकान मालिक के घर में पहुंच गए और मकान गणना संबंधित सबो जानकारी लेके डिजिटल गणना ला पूरा करीन है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग हा सबो निकाय ला पीए के पानी ले होवत परेशानी ला दूर करे के निर्देश दीन है। विभाग हा सबो निकाय ला बोरिंग बोरवेल मान मा एक हफ्ता मा जांच करके ठीक करे बर कहीन है। संगे संग टूटे पाइपलाइन ला तुरते सुधारे और नाली ले होके जाए वाला पाइपलाइन और घर के कनेक्शन ला घलो स्थानांतरित करे के निर्देश दीन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के चलत प्रदेश भर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1300 ले ज्यादा जोड़ा मन के बिहाव हुईस। ए बिहाव हा राजधानी रायपुर समेत सबो जिला में पारंपरिक रीति रिवाज के संग करेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा नवविवाहित जोड़ा मन ला बधाई दीन है। उमन हा कहिन है के योजना हा जरूरतमंद परिवार के बड़े चिंता ला दूर करत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोती ले पद्मश्री बरचयनित गोडबोले दंपत्ति लेगे विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण काली बिहिन्या 10:30 बजे ले 11 बजे तक करे जाही। ए कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र हा एके संग्रह करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाची समाचार कोती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली 10 मई के नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और गर्मी ले निपटे के तैयारी के समीक्षा करही। एमा केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसी के बीच अच्छा समन्वय, NDRF ला सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदा के बेरा शून्य जनहानि के दृष्टिकोण में सरलग ध्यान देना शामिल है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मा काली रायपुर मा हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम मा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा शामिल हुईन। ए मौका मा उमन हा कहिन के निस्वार्थ भाव ले लोगन मन के सेवा करना ही सबले बड़का धर्म हरय और इही रेड क्रॉस के असली पहचान है। कार्यक्रम मा लोक नृत्य, चित्रकला और नाटक प्रतियोगिता के विजेता मन ला इनाम दे के संगे संग प्रदेश के 64 रेड क्रॉस स्वयं सेवक मन ला प्रमाण पत्र देगीस। एकर अलावा अंगदान, रक्तदान, नेत्रदान और समाज सेवा में योगदान देवैया लोगन मन के संग अच्छा काम करैया कलेक्टर मन ला घलो सम्मानित करेगीस। ए मौका में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस सम्मेलन घलो हुईस। उहें रायपुर जिला प्रशासन कोती ले प्रोजेक्ट छाव के चलत लोक भवन मा स्वास्थ्य शिविर लगाए गिस जेमा सामान्य

0: बीमारी के संगे संग हृदय रोग, कैंसर, किडनी, स्त्री रोग और आने गंभीर बीमारी के निशुल्क जांच करेगी। बालोद जिला के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज हुए एक रद्दा हादसा में 3 झीन जवान लड़का मन के मौत हो गए। पुलिस ने बताया कि देवरी गांव ले ए तीनों झीन हा मोटरसाइकिल ले डोंडी लोहारा कोती जात रहीन, फिर इही बेरा खैरीडी गांव करा आगू ले आवत कार हा ए मोटरसाइकिल ला टक्कर मार दिस। टक्कर हा अतेक जोरदार हा रहीस कि ए तीनों जवान लड़का मन के मौका में ही मौत हो गए। एती सूचना मिलतेच पुलिस हा घटनास्थल में पहुंचीन और सब ला पोस्टमार्टम पर भेज के मामला के जांच शुरू कर दे है। ओती गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में घलो मझगवा गांव में एक ठिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हा रद्दा तीर बैठे 3 जीन मनखे ला टक्कर मार दिस, जेका से तीर कका और भतीजा के मौका में ही मौत हो गए और उन्हें एक जीन आने हा गंभीर रूप ले घायल हुए है। नारायणपुर जिला में आज सुरक्षा बल के टीम हा बड़का मात्रा में माओवादी सामान जब्त करे है। हमार संवाददाता हा बताइन कि सुरक्षा बल के टीम हा तलाशी अभियान के चलत तोके के जंगल में बड़का मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईडी बनाए के सामान जब्त करे है, जेमा 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोतिले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक मा बालोद जिला के संबंध मा जानकारी दे जाही। अब जानन मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग ले मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक ठेन चक्रवात बने हुए हैं। उन्हें राजस्थान ले लेके मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ ले लेत हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है, जेकर से तीर मौसम में बदलाव आए है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी हा बताइन कि अवैया 24 घंटा मा प्रदेश के कुछ जगह मा तेज हवा गरेर के संग मा पानी गिर सकत है। उहें 11 मई ले तापमान हा बढ़ सकत है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। आज छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय मा राष्ट्रीय लोक अदालत के हुई आयोजन, न्यायालय मा लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। और बालोद और गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में हुईस आज बड़का रद्दा हादसा। एक घटना में कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के हो गए मौत। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम। गोधुली में भोजपुरी लोकगीत लल्लू राम पांडे और साथी के सरों में सोहर गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लीजिए सुनिए सरगुजिया लोकगीत में झोलनी कर्मा, पियर साय और साथी के सरों में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे थे लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। गर्मी में बारिश की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे थके हुए मौसम को ठंडी मुस्कान मिल गई हो।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार का लिखा गीत, संगीत था विशाल भारद्वाज का, फिल्म थी माचिस।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, फिल्म थी सरगम। लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में SH बिहारी का लिखा गीत, संगीत है OP नय्यर का, फिल्म है सावन की घटा।

0: ट्रेन।
1: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है,
2: रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
8: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद

0: जिसने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। इनमें आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित प्रकरण शामिल थे। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज जिला मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलकर जब्त किए गए 6 एलपीजी कैप्सूलों से लगभग 92 मीट्रिक टन गैस का गबन किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने महासमुंद स्थित एक गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर के मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी, जो 4 जून तक चलेगी। नामांकन पत्र 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज ग्राम मुंडा में प्रगणकों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रगणक से मोबाइल लेकर स्वयं एक मकान मालिक के घर पहुंचे और मकान गणना संबंधी सभी जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरी की। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे स्टेडियम की निगरानी CCTV कैमरे से की जाएगी। इस बीच आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। वहीं 13 मई को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार।

0: रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। इस दौरान जगह जगह समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान श्री वर्मा ने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्रियां भेंट की। शिविर में 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 272 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बालोद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह 10:30 से 11:00 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी से तीनों युवक मोटरसाइकिल से डौंडीलोहारा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम मजगवां में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे बैठे 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा चयनित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की अंतिम चयन सूची कल जारी की गई। इसमें 148 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सुष्मिता सिंह का भी चयन हुआ है। उन्होंने 32वीं रैंक हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। आज राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने से पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है। इसके असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
2: आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में गस्टिंग 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी जाने की संभावना है, जिसका वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर। बाकी जिले जो है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मई से प्रदेश में मेघ गर्जन का गतिविधि कम होने का चांस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 10 मई से लेकर आगामी 4 दिन तक क्रमिक वृद्धि आने की संभावना है।
1: नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान तोके के जंगल में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और IED बनाने की सामग्री बरामद की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,70,000 रुपये नकद, 6 मोबाइल और 1 नोट गिनने की मशीन के साथ ही डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल क्षेत्र में स्थित घुघड़ा डैम में हाथी के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में

0: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला
2: आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए आपको अवगत करा दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे शाम 7:20 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:30 पर। रात्रि 8:45 पर सुनना ना भूलिए। इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। यदि श्रोताओं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, आइए अब जानते हैं कल दिनांक 10 मई 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कर्नाटक वीणा विद्वान श्री डी श्रीनिवास द्वारा। आकाशवाणी रायपुर से आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी शाम 6:05 पर। आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम कानून की बात। विषय होगा उत्तराधिकार अधिनियम। वक्ता सुश्री मनीषा ठाकुर सिस्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा। कल सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:51 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना हम लेकर आएंगे प्रातः 6:05 पर। रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। मुख्य गायन सर होगा महेंद्र कपूर का। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया। लोकगीतों के कार्यक्रम गुजे जंगल में आप सुनेंगे सरगुजिया लोकगीत देवारी लाल और साथी के सरों में, जिसमें आप सुनेंगे देवी भजन। छत्तीसगढ़ी लोकगीत में आप सुनेंगे भजन प्रभुनाथ वैष्णव और उनके साथियों की आवाज़ में। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा हम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम में होगा विशेष आपके लिए किस्सा कहनी। शीर्षक होगा बिना सिंह के पुकरा। संकलन और लेखन श्री शिवव्रत सिंह पावले का। संयोजक होंगे नागेंद्र दुबे। प्रस्तुतकर्ता शोभनाथ साहू और प्रतिभागी मृदुल गुप्ता शोभनाथ साहू और कमलेश सिंह का होगा। सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। बतौर गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे सुबह 9:00। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग हम लेकर आएंगे दिन के 12:00। शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। दिन के 1:00 बजकर

10 मिनट पर। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दिन के 1:40 पर। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ शाम 5 बजे से। गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 पर। युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली हम लेकर आएंगे शाम 6:20 पर, जिसमें आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत रामलोचन यादव और उनके साथियों की आवाज़ में। छत्तीसगढ़ी लोकगीत में आप सुनेंगे देवी गीत ममता सिंह और उनके साथियों की आवाज़ में। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। ये थी श्रोताओं कल दिनांक 10 मई 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत में गुलाम अली की आवाज़ में कतिल सिफ़ई का लिखा ये कलाम।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

0: अग्नु भैया राम राम।
1: राम राम परसु भैया।
0: अग्नु भैया मई के महीना में अंधड़ पानी आंधी पानी कभी देखे रहन कि पहला बार है?
1: भाई हमेशा देखती है हम कि ये महीना में नहीं एक अंधड़ पानी तो देहल
0: हाँ।
1: बाकी इधर धेरे होगी से एक हफ्ता ले देखा था कि भाई जहाँ ए दे मझीने दुई बजेल बिहाने तो बदरी दिखे लेकिन जैसे दुई बजल तहाँ ए गर्रा घाटा शुरू हो जाए। और पहले तो हम देखते रहें कि भाई ये नौता पहाड़ शुरू हुए ना तब ए दे हम उनकर उत्तर छत्तीसगढ़ कती मौसम हर बदले बाकी नौता पहाड़ तो अभी दूरिया है और इधर तो कहते हैं कि दुगो जेट है
0: दुगो जेट
1: पहला जेट का तो अभी दिखात है बाकी ना एक चीज जो फायदा यह है कि गर्मी से राहत मिली
0: गर्मी से राहत मिली बाकी यही वाला जो मौसम है राउर भी अभी गुठियात रहन कि 11 तारीख 12 तारीख अभी दो तीन दिन और रहे वाला है।
1: रही कौन कौन बाटले देखा है जो विक्षोभ मन रहते हैं कम दबाव के क्षेत्र मन रहते हैं जेमन अंधड़ पानी का कारण बनते हैं वो मन दिखता है तो अभी 11 तारीख तक ये मौसम रही कस रह कर संभावना है
0: मैंने आज न है परो दिन तक
1: बाकी कई को नुकसान भी होता है परसों भी देखिए नहीं तो आज तो हम उनकर आमा मत झर गिन
0: आम कर नुकसान हो गई कई रुख राय गिर गई कई जगह बिजली कर खंभा बन भी गिर गई मौसम कर उतार चढ़ाव से कई चीज कर प्रभाव पड़े लोग
1: और देखा शहर में हमारे जे आए नहीं तो देखा गोटा अंधार
0: अंधार है नहीं। हाँ,
1: हाँ। हम उनकर जो मेन बाजार है देवी में जो वहाँ में देखा तो अंधार तार उन टूटी ना है गिरी ना है और गोटा जो राय छाई फेंकाई से है पेड़ कर डंगाल में
0: हर जगह गिरी से और मौसम कर ये बदलाव है और हमन के समझना पड़ी एक बदलाव और हमन देखते हन अग्नु भैया कि जो पक्षी मन रहिन कई ठो प्रजाति हमन देखते हन कि विलुप्ति के कगार पर हैं कई प्रजाति कम हो गई हैं जो हमन बचपन में देखत रहन यहाँ तक कि गोरैया चिड़िया मध्य मन भी अब संख्या में कम दिखते हैं।
1: हाँ हमन देखते कि हम छोटे रहें तो अरे कौआ मल्ला खेदे पड़े नहीं अगर छोटे रहन तो अगर बहरे खान वन नहीं कहीं ले धर के रोटी उटी ला तो इतना कौआ मन का झुंड आ जाए कि लूट के ले जाए
0: बाकी अब
1: गोरैया कर भी वही हाल रही और अब देखा सब और कहाँ बार भुला जाता है
0: समय और जीवन शैली जो हमन बदले हैं नग्न भैया और वही के कारण है और आज देखा कितना बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज लगते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो एकर बारे में भी जागरूकता बढ़ाए बर आज के दिन ला विशेष रूप से मनाल जाते और एकर बारे में बताल गई से कि एक बार मई के महीना में हमन मनाते

0: और एक बार अभी अक्टूबर के महीना में हमन मनाए चुके हैं, तो आज मई के महीना में हमन देखा प्रवासी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं और विश्व भर में हमन पर्यावरणीय जागरूकता दिवस के रूप में एला मनाथन ताकि पक्षी मन के सुरक्षा हो सके और हमन ये चीज़ ला समझ सके कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो कितना महत्वपूर्ण होते हैं।
1: हमन कर जो उत्तर छत्तीसगढ़ है चाहे सरगुजा जिला कह ले रो रहे देखते कि दूसर दूसर देश कर जो पक्षी मन है वन भी आते हैं और हमन जग तो देखा हमन कर अंबिकापुर से लगल जो लखनपुर क्षेत्र है वहाँ जो साइबेरियन सारस वन है वो लंबा समय से आए के यहाँ पे रहते हैं और यहाँ कर वातावरण में यहाँ के जलवायु में ढहल गिन और यहाँ तक कि अंडा देहिस तो हालांकि ओकर से बच्चा नहीं निकलिस लेकिन जो सारस कर जोड़ा है वाला देख के तो लागे अच्छा
0: बहुत बढ़िया
1: बढ़िया कौतूहल कर विषय है।
0: मतलब साइबेरियन जो पक्षी मन है यूरोप और मध्य एशिया से भी कई ठो पक्षी मन आते और हमर देश कर हमर जो स्थानीय क्षेत्र कर जलाशय मन कर मन शोभा बढ़ाते तो मौसम परिवर्तन के साथ वैज्ञानिक मन बताते हैं कि हजारों किलोमीटर करे लंबा यात्रा करते हैं और ये मन पक्षी ये जो पक्षी मन है भोजन अनुकूल जलवायु और प्रजनन बर एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाते हैं और एक देश से दूसर देश कई कई किलोमीटर मन पार कर जाते हैं।
1: तो हमन का जिम्मेदारी है परसों भैया कि अगर हमन जब प्रवासी पक्षी आते हैं अगर वो पक्षी मतलब देख के हमारा अच्छा लगता है कि हमन जकर तो यह ना हो लेकिन बहुत सुंदर दिखता है
0: बहुत सुंदर
1: तो मतलब हमला शिकार नहीं करना है वाला बचाना है वाला संरक्षित करना है उमन कर मतलब बचाए के हम लोग संरक्षित कर तबे हमन कर जो प्रकृति कर शोभा है वो हर बनल रही।
0: एकर अलावा मन कीट नियंत्रण पर बड़ा मदद करते हैं परागण पर मदद करते हैं एक जगह से दूसर जगह बीज कर जो प्रचार प्रचार है। आजकल हमन देखा था कि जितना जंगल बढ़े ले ही पक्षी मन बढ़ाते हैं और खाद्य श्रृंखला ला संतुलित रखे में मदद भी करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बहुत के रूप में मन ला मानल जाते तो हमन ला गुलेल धर के मारना नहीं है इमन ला बचाना है कौतूहल में हमन के देखना है बढ़िया देखना है और समझना है कि इमन इतना दुरिया से आईन है तो वो चीज़ ला भी हमन के समझना है और वही ये आज के दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है।
1: और भी गोएट करना चाहब हमन भाई देखा है गो जीवन ला चलाए भर बहुत सारा काम करना पड़ेल नहीं और सब जायत कर व्यवस्था है प्रकृति में कि अगर नदिया है तलवा है तो वह न सिर्फ पानी कर व्यवस्था होल बल्कि हम उनकर आय कर जरिया भी बनेल तो जहाँ जहाँ जग बड़े तालाब है जे किसान भाई मन जग तलवा है वो मन राजा कसरत है। राजा कर कहे का मतलब यह है कि उन्हें मत्स्य पालन मछली पालन करके और बढ़िया रोजगार कर साधन उपलब्ध कराए धारते हैं।
0: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है अग्नु भैया बड़ा महत्वपूर्ण योजना है 2020 में शुरू करल गए रहीस और एकर मुख्य उद्देश्य यही है मछली मनकर उत्पादन बढ़ाना उकर माध्यम से रोजगार बढ़ाना और मछुआरा मन जो भी हैं उमन कर आय में वृद्धि करना। मछुआरा मन के अलावा जैसे राउर बात करें हमारे गाँव क्षेत्र में तालाब में मछली पालन करते हैं नदी में मछली पालन करते हैं और मछली पालन एक विभाग है उकर माध्यम से कई ठो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग मन है शहरी क्षेत्र के लोग मन है वो आय अपन बढ़ाते हैं और वो व्यवसाय अपना करके बहुत रोजी रोटी कमाते हैं उकर माध्यम से।
1: और हमने यहाँ तो देखा मछुआरा समिति भी बनी से उमल्ला सीधे जोड़ के उमन कर समूह ला जाल उपलब्ध कराना उमल्ला मछली बीज उपलब्ध कराना तालाब को रख रखाव करना सब कर व्यवस्था रूरे बताने मछली मत्स्य पालन विभाग उभर करता है। और ये योजना में भी व्यवस्था है कि तालाब का निर्माण मछली बीज के उत्पादन कराना और एक संगे संगे जो मछली मरकर आहार कर व्यवस्था है वोला करना उत्पादन होए के बाद वोला कोल्ड स्टोरेज में रखना ताकि एक जगह से दूसरे जगह परिवहन कर सके तो सब चीज कर व्यवस्था योजना में करल गई
0: से और नया नया तरीका से अब मछली पालन भी सिखाते हैं एकर आधुनिक तकनीक से किसान मल्ला परिचय भी कराल जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा सुविधा में ये भी उपलब्ध कराल गई से अग्नु भैया मत्स्य पालक मल्ला आर्थिक सहायता दे बर किसान क्रेडिट कार्ड कर सुविधा देल गई से और वो में जो कम न्यूनतम ब्याज पर वो मल्ला ऋण सुविधा देल जाए एक अलावा बीमा सुविधा भी है और मछुआरा मल्ला दुर्घटना बीमा कर भी लाभ देल गई से ताकि कोई अनहोनी अगर हो जाए तो मल्ला आजीविका सहायता भी देल जा सके और आपातकालीन परिस्थिति में मल्ला मदद भी मिल सके।
1: देखा खेती के संगे है राय कर बहुत अच्छा जरिया है। और जो किसान भाई मुझे कहा तो नहीं कि तालाब है,

0: और संगे खेती बाड़ी करत हैं और अगर मछली पालन साथ में करी और ये योजना में जितना लाभ मतलब दिया जाता है ओला अगर जान ही जागरूक रही तो दोहरा कमाई हुई।
1: और ये मत्स्य पालन प्रधानमंत्री मत्स्य पालन जो योजना है इकर वेबसाइट में भी पोर्टल में जाकर के भी किसान मन देख सकते हैं कि कितना वहाँ पर मछुआरा मन उमे पंजीकृत हो चुके हैं, कैसे हमन के लाभ मिल सकते हैं, कैसे लोन मिल सकते हैं। तो इनमें बताते हैं कि 26 लाख से अधिक जो हितधारक हैं उमन कर पंजीयन हो चुकी से, तो एकर क्षेत्र में जो तकनीकी सहायता है वो भी मिले, हमन के प्रशिक्षण भी मिले, तो जा करके एक बार देख सकती समझ सकती। अगनो भैया देखा बातें बात में बेरा हो गई से हमारे प्रायोजित कार्यक्रम कर कार्यक्रम ला सुनत ही कार्यक्रम है किसान वाणी और आज के दिन ये कार्यक्रम के अंतर्गत हमन सुनथन किसान गोष्ठी
0: लगे तो सुने जाए।

0: किसान गोष्ठी कार्यक्रम में रावर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। आज बहुत अच्छा मौका है, हमारे साथ में दूठो महिला कृषक आईन है और इनकर से हमन बातचीत करब। बढ़िया सुघर किसान दिखत है और दुरिया दुरिया से आईन है अग्नु भैया। कार्यक्रम कर शुरुआत करत ही और सबसे पहले एक परिचय कर दौर हो जाए तो कर बाद में हमन बातचीत करब।
1: परसों भी देखा आज फिर रोरे ठीक है कहें कि महिला किसान में जुटीन है और दोनों जन अलग अलग क्षेत्र कर रहे हैं। यही जन उदयपुर कति करा है, यही जन लुंड्रा कति करा है। तो सरगुजा जिला के दो गो ब्लॉक कर अलग अलग क्षेत्र कर महिला किसान मन आज स्टूडियो में आईन है। इनकर से हम गोड बात करबो, इनकर परिचय बता दूँ। पहला हमारे जो महिला किसान बैठी ना, इनका नाम है हीरामणि यादव, यहाँ है ग्राम जमड़ी लुंड्रा क्षेत्र कर। और दूसरा किसान है उनका नाम है पूर्णिमा सोरी, ग्राम तोलगा उदयपुर कर।
0: दोनों जन कर बहुत बहुत स्वागत करते हन। अच्छा घाम कर दिन भी चलता है, हमन बुलाए हन दुरिया दुरिया से, तो स्वागत है और हमन बातचीत करब। खेती बाड़ी सरगुजा क्षेत्र और सरगुजा अंचल में हमन देखते हन कि महिला मन भी बहुत तेजी से करते हैं और बढ़िया नाम भी कमाते हैं, बढ़िया पैसा भी कमाते हैं और सीखे पर भी हमन हर बार जब कार्यक्रम करथन तो सीखे पर भी हमन ला मिलता है कि कैसे कैसे उमन नीचे से ऊपर उठ के बढ़िया मेहनत करते हैं। तो पूर्णिमा जी राउर से बातचीत शुरू करब, अपन बारे में बताई विस्तार से, कैसे कैसे खेती बाड़ी से जुड़ेन, अपन आजीविका कर जो काम है ओकर से कैसे जुड़ेन, पहले का स्थिति रही, अभी में कितना बदलाव आई, से राउर ला कैसे लगत है अभी।
2: मोर समूह का नाम है खुशी महिला स्वयं सहायता समूह और मैं 2013 में समूह जब गठन हुई तो मैं समूह में जुड़े सर। ओकर से पहले की स्थिति सर, मोर पास तो खेती बाड़ी रही सर, तो ओकर से पहले की स्थिति मोर रहीस कि खेती करे पर पैसा का पूरा व्यवस्था नहीं हो पात रहीस। जब मैं समूह में जुड़े, समूह में जुड़े के बाद 3 महीना बाद मोके आरएफ का राशि प्राप्त हुईस, 6 महीना बाद हुईस मोके सीसीएल का राशि प्राप्त हुईस मोर समूह ला, और सीआईएफ राशि भी प्राप्त हुई। फिर हमर समूह छोटा छोटा ऋण लेहे बे चालू करें। मैं पहला ऋण लेहे रहें 10,000 रुपया, बोला मैं खेती में लगाएं। जब खेती में लगाएं तो मैं धान का खेती करें, धान में बढ़िया उपज हुई, बढ़िया फायदा भी हुई और बोला मैं धान ला बेच करके बोला मैं पटाए भी दें और बढ़िया फायदा भी होगी। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके मतलब बड़ा राशि भी लेना चालू करें। मेरे पास लगभग 5 एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त राशि भी चाहिए। तो बिहान के माध्यम से मुझे पैसा की कमी, बिहान में जुड़े से मुझे ये फायदा होगी कि मैं अब मक्का भी लगाता हूँ और धान का भी खेती करता हूँ और मोर पास बकरी पालन भी है। अब बकरी पालन के साथ साथ में मुर्गी पालन भी करता हूँ मैं, तो लगभग वो 4 लाख रुपया के आसपास कमाई हो जाती है। धान लगभग मैं वही 2 लाख रुपया का धान बेच देता हूँ

0: बढ़िया से खेती बाड़ी भर भी मोर हो जाते और मुके आगे चल के वो ड्रिप सिस्टम से सब्जी लगाना भी चाहत हूँ।
1: अग्नु भैया पूर्णिमा कर बातचीत ला राहुल भी सुनेन हमन भी सुनेन बड़ा गंभीरता पूर्वक बताइन और एक एक हमन तो कई बार संकोच करथन पूछे में कि कितना कमाई होता है कितना कहाँ होते लेकिन बड़ा विस्तार से धान में कितना कमाई होता है और सब्जी भाजी में और मुर्गी पालन बकरी पालन से भी कितना कमाई होते सब बताते हैं।
2: बाकी शुरू में कहीं नहीं कि महिला समूह से जुड़े तो देखा एकता में कितना बल है। एक जन कई बार आदमी काम लो चाहे तो भी नहीं कर पाए लेकिन अगर चार गो महिला मन साथ में आए खड़ा है तो बल लागे और वह फिर दिखना चालू हो जाए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि न सिर्फ पूर्णिमा एक काम लोग कर बल्कि इनकर जो समूह में सदस्य मन वन अध्यक्ष हुई सचिव हुई बाकी सदस्य मन हुई सब जन कर खेती है चमकत हुई
1: सब
2: तो एक फायदा हुए तो इनका सब आगे गोट कर परसू भी है। हम जब दूसर महिला किसान बैठी ना है जमड़ी गांव कर हीरामणि यादव इनकर भी जो गांव है उधर देखा चारों कती जंगल से घिरल पहाड़ी गांव है और हम सुनती कि इमन का जो इलाका है में टमाटर की खेती मिर्चा कर खेती खीरा कर खेती बहुत अच्छा है। तो हीरामणि जी बताई कि कैसे शुरुआत करें खेती पाती कर कैसे रोड कर पढ़ाई लिखाई हुई कैसे शादी ब्याह हुई कैसे जमड़ी पहुँचन और कैसे काम धंधा शुरू करें खेती पाती कर वाला बताते हैं।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मोर नाम हितामणि यादव है और मैं ग्राम पंचायत जमड़ी के हूँ, लुंडरा क्षेत्र। मैं 2014 में समूह में जुड़े, उकर बाद में बचत जमा करें हमन। फिर बचत जमा करत कर जैसे 3-6 महीना बाद हमन CIF लोन लेहन, जिसमें ले मैं 20,000 लोन लेहन। उकर बाद में टमाटर कर खेती करें, टमाटर कर खेती करें तो मैं बढ़िया मतलब कमाएं। एक शुरू में करें लेकिन मैं 2.5 लाख के आसपास रेट बढ़िया रही तो मुके शुरू में पूंजी बढ़िया नो चीज होगी। उकर बाद फिर मैं धीरे धीरे करके बैंक लिंकेज हम करवाएं। बैंक लिंकेज के साथ फिर हमन वही दोना पत्ता ले सब करो चीज करती और फिर खेती करती साथ में, जिनमें मोर साथ मतलब और दीदी मन जो गतिविधि करते हैं वह मन मतलब कि
4: उम्र के
3: अभी मैं खीरा लगाए रहें। खीरा में मैं 25,000 का लागत लगाए रहें लेकिन 80,000 कर बेचें, ते में ये बार उतना रेट अच्छा नहीं रही।
4: तो ड्रिप वाला लगवाए हाँ कि
3: हाँ ड्रिप वाला है।
4: कितना में लगभग ड्रिप लगी सही?
3: 1 एकड़ में है।
4: तो अगर देखभाल कौन करे, दिन भर कौन में दवा डालना, खाद डालना वाला देखभाल करना, ये पूरा रौरे देखती कि परिवार का साथी मिल कर?
3: मोर सास ससुर हैं और ओकरे संगे एक आक दुई ठे लेबर रहते हैं।
4: तो सिंचाई कर का साधन विकसित करे हो?
3: ट्यूबवेल है।
4: तो खेती में कैसे रौरे लगे इसकी? टमाटर खीरा ही लगाना चाहिए और कहीं कहीं खेती बीच में लगाया रहा?
3: मक्का लगा थी लेकिन बदल बदल के हर साल वही चोही खेती ला नहीं करी।
4: खेती में कभी नहीं लगी इसकी इतना कठिन काम है यार, हमें पानी डालना, दवाई डालना। अगर खीरा तनी मनी अगर गड़बड़ाएगी तो पूरा पूंजी भी डूबे कर उम्मीद रहे, संभावना रहे, तो कैसे लगी मतलब खेती है तो के लगे कि फायदा कर काम है?
3: सर हमार गाँव में अगर खेती बाड़ी नहीं करब तो हमार आजीविका कैसे चलती? मोर शादी ना 2008 में हुई, अगर हमार स्थिति इतना मतलब बोल रही ना गरीबी से हम गुजरत रहें कि एकदम हमार स्थिति एकदम वो चीज रही, बहुत ज़्यादा गरीबी हमार रही। जब मैं समूह में जुड़े ना, जब समूह में जुड़े और लोन के माध्यम से धीरे धीरे खेती बाड़ी वो चीज़ करें तो मतलब मोर गरीबी हर धीरे धीरे करके दूर होगी। आज समूह के माध्यम से मैं 4-5 लाख साल के इनकम कमाता हूँ खेती बाड़ी के साथ। मोर

0: 3 एकड़ जमीन होही जेमे मैं धान खेती करथों और घोड़ा है ओमे मैं खीरा टमाटर बेच के और मैं यही समूह के माध्यम से ही खेती बाड़ी लोन करके मैं आज अपन लैका मार मोर दुई ठे लैका हैं दुई ठे बेटे बेटा हैं एक ठे लैहा ये सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय मोर रोड बेटा ला पढ़ाथ हूँ और छोटे बेटा ये ठे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े
1: जगह पर सुबिया खेती है कैसे संभाले ले और लैका सेंट्रल स्कूल पढ़ता है और बढ़िया शिक्षा दीक्षा भी मिलता है और मन लगन से काम करे ले कोई काम और सफल रहे
2: देखा खुद रहते लुंड्रा में जमड़ी दूरस्थ क्षेत्र है लेकिन लड़का बच्चा मल्ला देखा खेती बाड़ी से पढ़ाए के और सेंट्रल स्कूल और दूसर एक तो और स्कूल में पढ़ा
0: सरस्वती
2: शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं
1: रौरे कितना पढ़े लिखे है
0: सर मैं तो नहीं पढ़े हूँ बकरा भाई अब कमे उम्र में ओघनी की स्थिति में मोर दई दाऊ शादी कर दही तो मैं दसवीं पढ़ पा रहे तेकर मैं भाई मोर ससुरार कर स्थिति उतना नहीं रही कि मैं अपन पढ़ाई आगे कर सकूं परिवार के पूरा जिम्मेदारी आएगी इस मोर ऊपर
2: पढ़ाई के साथ हीरामणि जी जागरूकता राउर के में जितना दिखत है ना अपन बच्चा मनला तो चाहा था कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे एकर अलावा जो खेती बाड़ी राउर करत थी वो बहुत बड़ा काम है पढ़ाई लिखाई से ऊपर जब आदमी जागरूक हो जाए ज्ञान मिले लोला समझ बुद्धि बढ़ेल तो ऐसे खेती बाड़ी करेल और राउर मन से सीख के और महिला मन भी जरूर प्रेरित हुई हमें लगत है और हमन ला भी सीखे पर मिलत है
1: परसों भी अब देखा पढ़ लिख के भी बहुत युवा मन खेती करता है नहीं हम देखा थे कि कई कोई सा हमारे जो किसान भाई बना थे जो पीएचडी करी ना कृषि विज्ञानी का है लेकिन नौकरी मल्ला छोड़ के नौकरी का तीन ही झाँकता है पढ़ाई लिखाई करके आए पीएचडी करके आए और डॉक्टरेट की पढ़ाई करके पीजी करके खेती कर कृषि संकाय से और वापस आके खेती करता है तो पढ़ाई हर मायने नहीं रखे लेकिन पढ़ाई अगर कोई करी से तो कर और पढ़ाई अच्छा। हर खेती में भी दिखे सुंदरता पढ़ा लिखल आदमी कर खेती हर आने रही क्यारी बनाई तो सीधा बनाई और गांव कर आदमी हर टेढ़े पेचंग बनाई दे तो ओला देखे में लागे कि भाई पढ़ा लिखल आदमी कर खेती है

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पूर्णिमा जी, राउर की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, कितना हुई?
7: मोर पढ़ाई तो 12वीं तक हुई से, और मोर शादी 2004 में हुई। शादी होने के बाद जब ससुराल में रहते रहे।
6: 5 एकड़ कर बहुत बड़ा खेत है राउर के पास। हमला बताइए कि साल भर में कब कब कौन कौन सा खेतियों में राउर करती, और अकेले इतना कैसे हिम्मत कर लेती अपन घर वाला के साथ में कि सब पूरा 5 एकड़ में खेती भी हो और कमाई भी देहत है।
7: तो हम बढ़िया से खेती बाड़ी, मोर पति हर भी बढ़िया साथ देते हमें, तो जब बढ़िया साथ देते तो हमन खेती बाड़ी भी बढ़िया कर लेती। और आजकल हमन लग पूंजी का भी कमी नहीं हवे, काहे कि जब भी हमन लग पूंजी का कमी हुई हमन समूह से ले लेबो, फिर खेती करके वाला समूह में पटा देती, जो भी हमन ला नाफा होते आमदनी होते वाला अपन पास रख लेती, वाला हमन अपन लड़का मन पर पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करती। और हमारे लड़का है एकलव्य स्कूल में रहते और वहीं पर थे, वो 3 लड़का हमें और 2 लड़का, एक लड़का है लड़की है सबसे बड़े हवे और कंप्यूटर कर रहे, और छोटे हर अभी 6वीं में पढ़ा थे और गाँव लेवल में ही रहते।
6: कौन कौन सा खेती हो लो में 5 एकड़ में?
7: 5 एकड़ में से धान का खेती होती और मक्का का खेती होती और भाटा भी लगा लेती सीजन सीजन के अनुसार, और अभी तो गेहूं भी लगाए रहे, अभी भी मक्का लगाए हैं सर, जिले अभी टूटे वाला है।
6: और बाजार कौन सा मिले रहा उनके?
7: मतलब गाड़ी मंगा लेती वहीं, पिकअप आ जाते वहीं से उठा के ले जाते।
6: अच्छा,
7: गाँव में
8: अभी मक्का कर गोड़।

0: करण, अभी जो बीती थे खरीफ में इतना पानी बरसे कि मक्का नहीं हुई।
1: हाँ पिछले साल हाँ पानी बरसे थे में तो मक्का नहीं लगाए
0: हाँ,
1: सर,
0: बहुत नुकसान
1: बहुत नुकसान हुई सुने।
0: तो अभी जो रबी वाला रहे मक्का, गर्मी वाला मक्का रहे, दोनों में का अंतर देखती खेती में?
1: तो सर खाद बीज बढ़िया ले डाल थन तो बढ़िया हो जाते सर,
0: गर्मी वाला भी
1: गर्मी वाला भी बरसात जैसे ही हो जाते सर, बस मेहनत चाहिए सर हमें, खाद भी समय पे डालना है और पानी भी समय पे देना है।
0: साग सब्जी के अलावा धान का खेती भी करत हो, धान कितना में लगाती, कौन कौन सा धान लगाती? रहमन का जो पुराना धान मन बिहन ला बचाए है का, जैसे जीरा फूलेगी, जूनी परास मन होगी, ये धान मन भी आ है कि मतलब खत्म कर धरा
2: लगाती सर? खाए बरी ना पतले धान लगाती, जीरे फूल धान लगाती और बेचे बरी हाइब्रिड करती।
0: देखा परसों ये सब जगह ही कस गोटाएल कि खाए बर पतला धान लगाती,
3: बेचे बर मोटा धान लगाती। हाँ लेकिन अच्छा है कम से कम पारंपरिक धान ला बचात हैं अभी भी। उदयपुर क्षेत्र में तो हमन सुनेन कि बढ़िया जो मोटा अनाज है ओकर भी खेती, रागी कर भी खेती करते हैं।
1: हाँ सर करते हैं कुछ किसान,
3: कुछ किसान करते हैं ना।
1: हाँ करते हैं सर।
3: राउत बतात रहन कि भाटा भी लगाए ही, तो मैं कीड़ा बीमारी तो बहुत पकड़ल, कैसे बचाती?
1: हाँ कीड़ा बीमारी तो बहुत पकड़ेल सर, तो ओकर जानकारी मुरपति है सब दवाई ला बढ़िया से जानते हैं और मैं दवाई ला समय समय पे देहत रहते हैं।
3: पूरा दवाई आधारित खेती है कि कुछ जैविक भी है, कुछ गोबर खाद पर
1: सर?
3: खेती है
1: जैविक खाद भी डालते हैं सर, हमारा कृषि सखी मन जैविक खाद बनाए बर भी हम लोग सिखाए दी ने बढ़िया, लेकिन जैविक खाद भी बनाए लेते हैं तो जैविक खाद भी डालती, जैविक खाद और वाला दोनों खाद सर।
3: जैसे कृषि काम करते हैं वहाँ
1: जी,
2: कृषि मित्र मन जैविक दवा बनाते हैं नीमास्त्र बना, तो अगर उनमें कीड़ा लागत है और वो शुरू से वो दवाई ला अगर सिंचाई करत ही तो उनमें कीड़ा नहीं लागे, कीड़ा कर एकदम कीड़ा उमा हो ना, अगर जैविक दवा ला सिंचाई करत ही शुरू से तो कभी नहीं लगे, और एकदम ज़्यादा जीत जाही कीड़ा वो तब तब सिंचाई करब तो कहाँ बची जाए। लेकिन भर गाँव में अब ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कृषि मित्र पशु सखी है ना तो जैविक दवा मन ला ही किसान मन ज़्यादा उपयोग करते हैं।
0: खेती के संगे हीरा मंडी जी और कहाँ का करती? जमड़ी में तो हम देखती कि पशुपालन भी खूब है और जो गांव है ओकर आसपास करदोनी होगी, सहराता होगी, बदगरी होगी, वो कति पशुपालन बहुत है, पूरा अंबिकापुर में दूध ला लेके ही कति आते हैं, दूध का उत्पादन कौन जमाना ले होता है कई पीढ़ी से, तो और जग भी है गाय?
2: गाय तो मोर जे एक ठे है लेकिन हमन दूध नहीं बेचे थी, ए बकरी मन बेचे ही, अभी मैं यही एक सप्ताह के अंदर 3 ठे बकरा बेचे हूँ, साल भर के रहीस 35,000 के वो चीज में मैं देहन।
0: कितना बकरा बकरी रोज जगह?
2: मोर जो है 25 ठे है।
0: तेरा भी समूह के माध्यम से करे?
2: हाँ समूह में CIF लोन ले रहे हैं, CIF बकरी लोन ले रहे हैं, अब मैं वो लोन लपटाए धारे 30,000 में बकरी लोन ले रहे हैं, और उसके माध्यम से मैं 5 ठे एक ठे बकरा खरीदे रहे हैं और 4 ठे बकरी खरीदे रहे हैं।
0: बकरी बकरा का देखभाल करे और क्या करना पड़े? जैसे रउरे में पहले गाय और भैंस पाले हो तो का का में ज़्यादा मेहनत लागे कौन में?
2: बकरी में गाय तो मैं नहीं पोसे हूँ तो मैं नहीं जानू गाय को उतना मतलब आऊ करत है, लेकिन गाय के देख रेख गाय पालन में नहीं करे हूँ, एक ठे गाय बस दूध बरीक रखे हैं तो मैं मोर ससुरे कर ले लोला, कर चारा पानी सब मोर ससुर मोर सास दे देते हैं।
0: और बकरी बीमारी लगे का?
2: हाँ
0: परेशानी आये
2: बकरी में आये ना सर, जैसे वो चपका खुरहा कीड़ा ये सब हुए तो हमन मतलब हर 3 महीना में हमन वाला डिवार्मिंग करवाती पशु सखी से, और 6 महीना में साल भर में 2 ठे टीका करवाती।
3: डिवार्मिंग ला समझे कि नहीं अग्नु भैया? डिवार्मिंग का लगत है बताओ हमारे हीरामणि जी, डिवार्मिंग का?
1: डिवार्मिंग में सर एल्बो मार दवा ला पीला थन।
3: अच्छा
2: जो कीड़ा कर
1: 3 माने तो ऊपर पेट में जो कीड़ा रहती है
2: वो हर नहीं मर जाए, अगर
1: एक थे एल्बेंडा जोल भी होती ओला भी पीला थन तो कीड़ा हम मर जाती, तो मर जाती तो जब वो लेटिंग करती तो मैं निकल आती कीड़ा सहित बाहर।
0: बकरी में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है पोंका पोंकनी का, एक बार बकरी अगर कहते नहीं कि जेकर ना तो छेरी वो अगर छेरी छेरी धर ले परसों भी तो फिर आफत हो जाए, तो वही बीमार पड़ जाते हैं और बकरी अगर बीमार पड़े तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन इतना कठिन काम लोग करते हैं दोनों जन।
2: तो सर दवाई अगर सब दवाई अगर बढ़िया हर तरीका से ओके करते हैं ठीक ना, तो वो पतला दस्त वो सब नहीं हो,
1: बकरी मन भी मचान मन बनाए के रखे हैं
2: वो हमें।
0: अभी सरगुजा में जिला पंचायत तरफ से छेरी बैंक, सरगुजा छेरी बैंक का शुरुआत हुई से
2: लखनपुर में
0: पता है? हाँ। तो का सहायक मतलब तुम रौरे में से संपर्क करे रहे?
1: नहीं।

0: एंकर सर आइन है अभी तो वहाँ हमारे खमरिया में भी एपीएससी सेंटर खुले वाला है, तो
1: अच्छा
0: बतात रहिन कि जो भी बकरी रही बेचे बर रही तो यहाँ आन के बेच सकत है।
1: बैंक से
0: हाँ
2: पुनिया जी रहुरे कै गो बकरी उकरी पालन करे ही
0: सर मोठ 20 है सर।
2: कैसे ओकर देखभाल करती
0: तो सब मिल के देखभाल करथन।
2: पुनिया जी कैसे देखभाल करती बकरी कर 20-25 गो बकरी पालना आसान नहीं है, ओकर रख रखाव कैसे करती, बांधे छोरे कर का व्यवस्था है, ओकर चारा कर का व्यवस्था है, का कलक हवा थी, कैसे मन का स्वास्थ्य ठीक रहे, तेरा विस्तार से बताते हैं। कहे कि हम उनका जो सरगुजा है पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर खेती के बाद अगर किसान भाई मन कहीं ला रखते हैं तो छेरी बकरी रखते हैं, सब करे थे देवाल में ढोसियाते रहते हैं 2-4 छेरी बकरी, और उला एक तरह से ATM कहते हैं कि अगर जेकर जग बकरी बकरा है वो रोका पैसा पाए जाए।
0: वो तो सही बात है सर, हमारे जब पैसा नहीं रहे तो हमारे बकरी बकरा तो रहले रहते, बोला जब भी हमारे पैसा के जरूरत होते तो हमन बकरी बकरा रखे दे बेच देते हैं। और खरीदे वाला का तो कमी नहीं है सर आजकल, वो तो घूमते रहते घूमे वाला भी हैं, और IFC सेंटर में अब वो हर खुल जाए तो और बढ़िया है सर, हमन जब चाहबू तब ले जाबू बेचे बड़ी कूहेला है।
2: कौन सा प्रजाति कर बकरी बकरा है, हम तो सुने हैं कि कौन कौन बकरी बकरा वाला पालते हैं जमुनापारी मतलब, तो कर जो बकरा रहे वो 40-40 किलो कर रहे।
0: हाँ सर 40-40 किलो का तो रहते सर, लेकिन अभी तो मेरे पास देसी नस्ल का है सर, तो अब देसी नस्ल का है तो कुछ गेहूं तो लगा ले रथन सर, ओकर भूसी ल रखे रथन, कुछ खली मिला लेथन सरसों का, कुछ
3: दालचीनी
0: तो लगा थी मक्का अभी पिसवाए के उम्मीद मिला के दे देते हैं।
2: उन गांव में देखते कि अक्सर परसु भी है जो उन बकरी बकरा पालीन है उन कोनो गांव का से निकलते हैं तो टांगी में बिल धरे रहते हैं नहीं, और देखिए तो खाली डार डोहरा मतलब छोपत रहते हैं, और कोनो साइकिल में कोई मोटरसाइकिल में, अभी तो देखिए तो ऑटो और टेम्पो में बिठा के ले जाते हैं और डोहरा मतलब काट लाते हैं, तो हरा चारा खवाए से कहा देखती परिवर्तन।
0: हरा चारा तो जरूरी है सर, बकरी मतलब थोड़ा सा हरा चारा देना जरूरी है। अभी तो ऐसे हमन जो जगह पे हवन वो तो थोड़ा सा खुला जगह हवे, थोड़ा सा टहलाए पर भी बकरी मला ले जाए पड़ते सर, शाम शाम टाइम जैसे 4 बज थे तो हमारा टहलाए पर भी ले जाते हैं, तो घरे जैसे मुरपति हरत थे तो थोड़ा सा टहलाए ले घुमाए फिरा लेते हैं, और हरा चारा बहुत जरूरी है सर साथ में।
1: अलग अलग तरह का काम है अग्नो भैया इनकर, और हमन तो सुन खेती बाड़ी भी है पशुपालन भी राउर मन करत ही सब्जी भाजी कर भी काम करे, अपन आजीविका समूह वाला काम वो भी कम काम नहीं है, तो दिन भर कैसे अपन व्यवस्था बनाती है, एक अलावा घर कर लड़का बच्चा मन कर सब काम भी रहे।
0: हाँ सर तो काम तो रहते सर, टाइम ला निकालने पड़ते सर, तो जब हम कुछ काम करत रहते तो कुछ काम ला पति कर लेते हैं, कुछ काम ला हमन कर लेते हैं, तो ये टाइप से काम
1: सकाए जाए लेकिन
0: सकाए जाते
1: सब ला मैनेजमेंट करना पड़त हुई।
0: हाँ मैनेजमेंट करना
1: सुबह से शाम तक,
0: सुबह से शाम
3: टाइम तो तनी तनी सब पर देना पड़े।
2: हीरामणि जी रोरी ये बताई कि जबनी गांव कर माटी है कैसा है, कि वो इतना दिन खेती करा थी तो रोरी लागत हुई कि गांव कर जो माटी है इसमें कौन खेती है बढ़िया हुई, खीरा है बढ़िया हुई कि टमाटर है बढ़िया हुई कि लौकी हुई कि बरबट्टी है, इतना दिन में काला पकड़ पाया कि यह बढ़िया हुई हमकर माटी में,
3: वहाँ की माटी में टमाटर खीरा और धान वहाँ के माटी वो चीज़ है थोड़ा पखनोरिया टाइप के है, लेकिन वहाँ के माटी में वो चीज़ नहीं है पखनोरिया टाइप से है, लेकिन वहाँ उपज बहुत अच्छा है।
2: परसों भी हम कोरिमा गांव गए रहे हैं,
1: हाँ।
2: तो देखें कि एकदम पथरीला जमीन
3: हाँ।
2: पहाड़ और टमाटर में कितना बढ़िया हो रही, तो माटी है करिया रहे लेकिन भले पखना वाला है लेकिन उत्पादन
3: उत्पादन वहाँ बहुत अच्छा है।
1: उतर सब जितना किसान मन है बड़खा बड़खा टमाटर कर बैंगन कर धान कर हम सबसे गोट करे हैं, और सब यहाँ भी आइन है और हमन भी गए हैं, तो बड़ा बढ़िया लुंडरा धौरपुर क्षेत्र बड़ा सब्जी भाजी कर बड़ा बढ़िया खेती वहाँ पर है, तो इते कर हालचाल बताई पूर्णिमा जी, राउर का जो तोलगा गांव है उते कर माटी कैसे हुए, उदयपुर में कैसे खेती हुई?
0: उते का माटी है लाल माटी है सर।
1: अच्छा,
0: और लाल माटी में उपज बहुत बढ़िया होते सर, बस उसमें मेहनत बस देख रेख साग सब्जी का जो भी खेती बाड़ी करी ना उन्हें मेहनत करी तो बहुत अच्छा उपज हुई।
1: कभी माटी जांच कराएं का?
0: हाँ सर माटी जांच कराएं, इसी विभाग का मनाए रही तो माटी ला जांच करी।
1: कहाँ निकली उसमें कुछ कमी निकली कुछ बढ़िया निकली
0: तो कृषि जाँच कराए समय तो मोर पति छे।

0: रहे सर, तो का का तो कुछ कुछ कमी बताए रही,
1: जैसे टमाटर उमाटर खीरा लगाए से पहले ना वो जाके मिट्टी ला जांच करवाए परी भेज देती।
2: हर साल करा थी?
1: हर साल।
2: नहीं अच्छा चीज है, माटी कर जांच से पता चले कि कौन सा खातु नहीं डालना है, कौन सा खातु ज्यादा डालना है, तो ये सब पता चले लो। और मन एक बारे में जागरूक ही बड़ा बढ़िया बात है।
3: और का तैयारी कर रखी अभी जैसे बरसात आए वाला है?
1: अभी तो सर बरसात में हम टमाटर और मकई और वही धान कर खेती।
3: टमाटर कौन सा बीज वाला लगा था पौधा को तैयार करके कि ग्राफ्टिंग वाला पौधा ले?
1: हाँ ग्राफ्टिंग में थे।
3: का अंतर पाया इतना दिन में कि खुद से पहले थरा कर रहे हैं?
1: पहले तो अभी यही साल दो साल हो थे ग्राफ्टिंग में लगा थी, लेकिन हम अपने से नर्सरी चीज करके बनाते रहे।
3: तो दोनों में क्या अंतर पाता कि ग्राफ्टिंग वाला पौधा ज्यादा बढ़िया है?
1: सब गाँव में करत रहते हैं सर, तो करके देखे ना कि भैया की वो विधि लल अपना थी, तो थोड़ा अलग अलग करके देखिए सोच के करें, लेकिन उपज जिसे ग्राफ्टिंग करें अपन वो चीज नर्सरी उगा करें तो तनके मनिक फर्क पड़ी, लेकिन उपज वैसे ही हुए।
2: अपन जो खेती बाड़ी जो पीढ़ी से चले आते हैं नग्न भैया, वो अभी भी गांव में चलते हैं और उकर साथ में अब नया नया खेती ला मिला मिला के देखते हैं सब। ऐसे हमला लगेल राहुल मल्ला का लगेल कि पहले के समय में और अब के समय में कितना फर्क पड़ी से खेती बाड़ी से कमाई हो सकता है, परिवार के पालन पोषण हो सकता है?
0: हाँ सर बहुत फर्क पड़ी से सर खेती बाड़ी में। आजकल ऐसा नहीं है जेकर पास खेती बाड़ी है तो बहुत खेती से बहुत ज्यादा आमदनी है, बहुत ज्यादा है। एक साल तो जैसे हमारे खेत में मोर बहिन लगाए रहीस और कुछ किराया पे ले रहीस तो 7 लाख का मक्का बेची रही सर।
2: एक साल में
0: सर उस समय मैं मक्का नहीं लगात रहे, फिर मैं देखे तो कर हाँ
2: वही ला देख के लगाए,
0: हाँ वही ला देख के मुँह लगाए।
3: और सुबिया खेती ला मैं कहा तो हूँ कि देखा देखी वाली अगर पड़ोसी कर खेत बारी में घास रही ना तो बगल का पड़ोसी हर बियाल ढेर देल कि अरे ओकरो तो घास बारी है जाए जाए, लेकिन अगर पड़ोसी का खेती बढ़िया दिक्कत है तो इसगा में अपन खेत ला जोते लो करे तो ये एगो भले ईर्ष्या वाला है लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा दिखेल और सबकर खेती है समर जाए।
2: आगे दोनों जन राउर मन का सोची यही खेती ला आगे बढ़ाना है कि कुछ नवा काम और सीखना है करना है?
0: सर तो अब खेती ला आगे बढ़ाना भी है, थोड़ा अभी जितना कम करता ना उकर से ज्यादा करना है ताकि ज्यादा आमदनी हो। और खेती जैसे फायदा तो कोई चीज में है ही नहीं है सर, अभी खेती में बहुत ज्यादा फायदा है तो हमारा बढ़िया से आगे बढ़ाना है सर।
2: कुछ मांग है राउर के कुछ हो जाती कुछ गांव भर चाहे अपन भर कुछ मांग है?
0: तो हमारे बताओ अभी मैं पैनल उनल ले लूँ कहता हूँ सर, कृषि कार्य बड़ी पैनल लगवा हूँ कहता हूँ,
2: मैंने ड्रिप कर पूरा सिस्टम।
0: हाँ।
2: खातू भी वही में चाहिए दवाई
0: हाँ,
2: भी वही में चाहिए
0: लगवाना है अब।
2: अच्छा पैनल भी लग
0: पैनल भी
2: सोलर पैनल
1: हाँ, क्योंकि लाइट गोल हो जाए ना तो परेशानी
0: हो जाती सर।
2: अच्छा
3: समूह से राउर में जुड़े रहें तो ज्यादा हमारे जगह समय भी नहीं है, दोनों जन बारी बारी से पहले हीरावण जी बताओ कि समूह से जुड़े के बाद कहाँ कहाँ घूमे को मौका मिली, इस नया जगह देखे को मौका मिली, कहीं गए हैं बाहर?
1: हाँ सर रायपुर गए हूँ मैं और समूह में मैं जुड़ेन, फिर 2014 में तो मैं समूह में जुड़ेन और 2020 में मैं कृषि पद के कृषि के ऐसा कृषि मित्र के पद पर चयनित करें, ओकर बाद कृषि मित्र में मैं काम करत करत वो IFC केडर मैं चुनें, तो ट्रेनिंग व्रेनिंग पर मैं रायपुर सब गए हूँ और ये अंबिकापुर ये बाहर जिसे वो तो जाते रहती फील्ड में हम डेली काम करती अब।
3: देखा परसों के कितना बढ़िया नहीं कि खुद भी करता है दूसरा जला सिखा भी है,
2: बाहर निकले सीखे कर अनुभव बहुत अच्छा मिले सब।
3: पूर्णा जी और कहाँ कहाँ गए बस बता देता
0: सर? महू तो जैसे समूह में मैं जुड़े तो महू रायपुर गए रहे सर, जब क्लस्टर में जब सहायक सचिव के पद पे रहे तो हमारे जो वही समय जब वहाँ मीटिंग बुलाए रही तो रायपुर गए, तो समूह के माध्यम से सर हमला बहुत बढ़िया है कि हमें बाहर निकले का मौका मिलिस, नहीं तो हम तो घर का ही चूल्हा चौका करते हैं सर।
2: घर का अब कोई राउर मन से पूछी ना तो राउर जरूर बताब कि हमन आकाशवाणी भी गए रहे।
0: हाँ, कि हमन आकाशवाणी भी गए रहे
2: और आकाशवाणी जाके अच्छा भी लगी,
0: अच्छा भी है ना सर।
2: तो हमला भी बड़ा बढ़िया लगता है अग्नु भैया, कार्यक्रम कर समेटे कर समय हो गई से तो दोनों जन कर बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। हीरामणि यादव जी कर जमड़ी साय रहन जमड़ी लोडरा में पड़े, और पूर्णिमा सोरी जी कर भी धन्यवाद करत हन तुलगा उदयपुर साय रहन।
0: आप मान ला भी।

0: ये रही इस किसान गोष्ठी कार्यक्रम और किसान वाणी कार्यक्रम अग्नु भैया।
1: हाँ परसु भैया,
0: उम्मीद करता हूँ कि सुनोइया भैया बहनी मल्ला जरूर अच्छा लगी सोई। और अब बेरा हो गई इसे चौपाल से भी विदा लेकर, तो फिर और कोनो दिन भेटब तो फिर बातचीत करब। आज चल थी,
1: राम
0: राम, राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत दिया है एसटी वर्मन ने। फिल्म है गाइड। इस गीत को सुनना चाहते हैं मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। रावण करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। इस गीत को सुनना चाहते हैं विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणे से महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव और आरव अर्पिता। ग्राम पौड़ी पोस्ट धौरपुर विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से प्रथम, प्रफुल्ल खंडा, कैरव गारवी, अनुज, सुनैना दास और वेद कुमार। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अगली इंस्टा फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम चरोदा बार नवा पारा जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से। जिला रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद और तरुण यादव। महमूद डुमरगांव बिहार से वलीउल्ला अंसारी, यसमानाज अंसारी और बक्सर जेल रोड से राज एसटी अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रिहान। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेडी नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से। राजगढ़ जिला धार से प्रकाश चंद गोयल। गांव नथाना पंजाब से हजिंदर छिंदा, जस्वी जस्सी, सीता और गीता। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पोस्ट कितका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम, टेकराम सिंधराम, विवेक, उमेश, अर्जुन और अरविंद सिंह टेकाम। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब से रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके। जसपुर और दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महमूद दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब मोहम्मद,

तमीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी बेटी, अलशिफा परवीन। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा गोस्वामी। ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेवपारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान लल्लू बल्लू घनु अमित अभिजीत गोविंद तरुण सकल राम प्रियांशु राजकुमारी नेहा नायरा समायरा खुशी सौम्य अमेश्वरी मुन्नी बाई सोनामती माया राजवाड़े सिमरन राजवाड़े और राजवाड़े परिवार। सिद्मा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद दीपिका निषाद शिवांश निषाद भराम भरोस पैकरा नरेश सिंह एवं निषाद परिवार। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गीत।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत था आरडी बर्मन का, फिल्म थी पराया धन। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइस में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, असद भोपाली का लिखा गीत, संगीत है राम लक्ष्मण का, फिल्म है मैंने प्यार किया। इस गीत को सुनने के लिए इंस्टा फरमाइश हमें लिख भेजी है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद असफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा। जय डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू, जय किशन साहू, योगेश, वासु, हेमा और राधिका साहू। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश और जीविका दली। पुनावले पुणे से अजय सोनवणे, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवणे। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और उजस्वी यादव। भागलपुर उसतू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना, पूजा, आरती कुमारी और सुनीता देवी। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग। बुढ़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौस, स्वीटी छाबड़ा। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटके, शरद कुमार डुडवानी एवं माखीजा परिवार। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई सिल्लोड से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातमा सोगरा। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और नीलेश येले। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत।

0: अगली इंस्टा फरमाइश भेजने वाले हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलूड जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी और नंदिनी कुमारी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, सुकुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैबी वैदही, जोशी बेबी, हंसिका जोशी, कुमार अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती कैवट जी। ग्राम नवागांव मुढ़ीपार जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, तेजेश्वर और कुशाल साहू। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्रॉय। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हसन, शामसुल कमर राही। ग्राम टोरोवाल जिला नवांसह पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेविका मामिका और वाणी थांदी। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हनरी शंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, मिठ्ठूमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर, उदित नारायण और उद्भव मनोहर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है जतिन पंडित और ललित पंडित का। फिल्म है मोहब्बतें।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवत, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, बीसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव भारती, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पिहो, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य, अन्नपूर्णा बड़ी, सावित्री, लक्ष्मी, चंद्रकला, काशीनाथ बड़ी, श्वेता, तपस्या, माही, रेणुका, पल्लवी, चैत्र, आदर्श, राजू भाई, बाबू भाई, वे नारायण मंदिर के पास गदाबेट गेरी कर्नाटक से इन्होंने हमें भेजा है। गोला रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, शाहिल बजाज और बिट्टा बजाज, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन, हबीब शंकर, मंजू काशीनाथ मामा जो हैं कृष्णा कॉलोनी गदग कर्नाटक से, दयानंद कॉलेज भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से हमें भेजा है, विष्णु मस्किन, रितिका वाणी, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता आरोही, प्रियांशी और सोनी। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर अगला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में, संगीत है नदीम श्रवण का, गीत लिखा है समीर ने, फिल्म है तड़ी पार।

0: आप सुन रहे थे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब हम समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासांको ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234

0: सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना

0: ऐसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और

आप सुन रही थी लता मंगेशकर की आवाज़ में हजरत जयपुरी का लिखा ये गीत। संगीत था एस डी बर्मन का, फिल्म थी जिद्दी। लीजिए सुनिए अल्ताफ रजा श्वेता सिट्ठी के स्वरों में माया गोविंद का लिखा गीत। संगीत है विनस कंपनी का, फिल्म है कीमा।

आप सुन रही थी आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीत था रवि का, फिल्म थी दिल्ली का ठग। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब हम अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें आप उनके लिए बदलिए, लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी।

0: करेंगे, मुझे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं। शायद बहुत लोगों को अखरेगा इस मामले में, मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें।
1: मैंने तो आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगु थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें की कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरी नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पर बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जब

0: सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि ये फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और

0: और प्रधान कौंसिल वो है 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप हैं जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाओ में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग देशों के दोस्त थे, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर।

0: की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
1: मेरा नाम स्मिता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है, मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना डीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इतना कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B में एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे अपने शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है।
2: मेरा नाम साक्षी है और मैं भालुगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भालुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
3: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
0: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म

0: उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
1: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
2: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
0: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
1: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
0: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में

0: विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
1: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santur recital with rag Jansammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhya Lay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents राग आभोगी। मध्य लय एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। मीडिया वेब पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 230.99 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।